0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மை மனோஜ். भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों

0: श्रोताओं, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है। ये साहस और शांति का प्रतीक है। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीवन। वेल, ब्रिंगिंग द फेस्टिव स्पिरिट इनटू द स्टूडियो इज द एब्सोल्यूट परफेक्ट वे टू कनेक्ट विद योर मॉर्निंग लिसनर्स टुडे। एंड सिंस इट इज द ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि व्हिच इज गोइंग ऑन, वी कैन सीमलेसली ब्लेंड द डिवोशनल एनर्जी ऑफ द मॉर्निंग विद द rich cinematic history of the three legends that we will be talking about in the personality section. And well, more on that in the last particular section, so you have to wait, listeners. And this is our way of telling you that you have to stay tuned with us till the next 30 minutes. First, we are beginning with the headlines, and we also have Metro City updates and the historical information which is related to today. Today it's 13th of October 2026. Manoj, shall we begin with the headlines?
0: Ji. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी।
1: India will host the first BIMSTEC Home Ministers meeting today in New Delhi, where issues related to terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats will be discussed. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism, organized crime. He said through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
1: The center today informed the Supreme Court that it has decided to regulate trade margins on anti-cancer medicines by capping them

0: दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नात्सुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिया, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे।
1: Well, there's some more news about the draft National Steel Policy Vision 2047. Well, the government has the draft National Steel Policy Vision 2047. This provides long-term policy framework to build a globally competitive, technologically advanced, environmentally sustainable and resource-efficient steel sector. The policy aims to meet the country's growing steel requirements while strengthening India's position in the global steel industry. The policy projects the country's per capita steel consumption rising to 302 kg from the current 116 kg, while India's crude steel production has already increased from 89 million tons in 2014-15 to 170 million tons in 2025-26.
0: हो जाएगा। और अब रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली के महापौर प्रवेश राही ने कल दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ मालवीय नगर में स्थित वाल्मीकि कैंप में हर घर जल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के अंतर्गत वाल्मीकि कैंप के 216 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री वाही ने कहा कि हर घर नल योजना जैसी पहले नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना से वाल्मीकि कैंप के परिवारों के दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी और घरों तक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को गति मिलेगी। श्री वाही ने कहा कि ये पहल स्थानीय निवासियों को पेयजल की सुविधा प्रदान करने में सहायक होगी। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली के महापौर प्रवेश राही ने कल दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर में रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य घरेलू रद्दी और कम उपयोगी सामग्री की मात्रा को कम करना, उपयोगी वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल सुनिश्चित करना तथा पुनः चक्रण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। श्री वाही ने कहा कि इस पहल से दिल्ली के नागरिकों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में पश्चिमी क्षेत्र के सभी वार्डों में नागरिकों के लिए ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे।
1: Now we'll head to Chennai, Manoj.
0: जी।
1: The lion safari at the Arignar Anna Zoological Park in Vandalur will remain suspended for 20 days from tomorrow. Repair will be carried out on the chain link fencing and perimeter wall, and overgrown vegetation will be cleared as the zoo prepares to introduce two newly arrived Asiatic lions to the group. Another update from Chennai only. The government has recommended Nilavembu water as a therapeutic medicine to prevent catching the seasonal fever and dengue. Over 40,475 kg of Nilavembu has been made available for use in the Siddh medical hospitals and district hospitals. It has been advised to consume the drink once a day as a preventive measure.
0: अब मुंबई, महाराष्ट्र की खबर। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र की मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां और दावे दर्ज कराने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मसौदा मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आपत्तियों और दावों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची निर्धारित समय पर 16 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पात्र नागरिकों और नए मतदाताओं से विस्तारित अवधि का उपयोग नामांकन कराने, आवश्यकता अनुसार मौजूदा प्रविष्टियों में सुधार करने, आपत्तियां दर्ज कराने का आग्रह किया है। मुंबई की एक और खबर। मुंबई सामान्य डाकघर GPU ने सोमवार को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उपलक्ष्य में डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया। डाक टिकट संग्रह दिवस 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में डाक टिकट प्रदर्शनी, विद्यार्थियों के भ्रमण, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताएं और प्रख्यात डाक टिकट संग्राहकों के व्याख्यान शामिल थे।

0: डाक टिकट दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष विलेख के साथ भारत के प्रवासी पक्षी श्रृंखला एक शीर्षक से सचित्र पोस्टकार्ड का एक सेट जारी किया गया। डाक सेवा निदेशक सिमरन कौर ने डाक टिकट संग्रह के शैक्षिक महत्व और हस्तलिखित पत्रों के भावनात्मक महत्व का उल्लेख किया। पोस्टकार्ड में प्रकृतिवादी दिवाकर देवीदास थोम्ब्रे द्वारा खींची गई महाराष्ट्र आने वाले प्रवासी पक्षियों की तस्वीरें हैं।
1: Well, we'll focus our attention on Bengaluru. Bengaluru will host the FIBA Women's Basketball League Asia 2026 at Sri Kantirava Indoor Stadium from October 20th to October 25th, with six leading clubs from across Asia participating. Announcing this in Bengaluru, Deputy Chief Minister Dr. G. Parameshwara said that the Karnataka government is committed to developing Bengaluru into a major national and international basketball hub. So the participating teams, they include clubs from Japan, South Korea, China, the Philippines, Chinese Taipei, and Indian Railways as well. Dr. Parameshwara said that the championship would promote women's basketball and provide Indian players, particularly young athletes, an opportunity to gain exposure to international level competition.
0: अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। पश्चिम बंगाल सरकार ने पर्यावरण विभाग के कामकाज और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक सलाहकार समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को कोलकाता में पर्यावरण नियंत्रित एकीकृत संगठन द्वारा आयोजित शेरा देर शेरा निर्मल पूजा पुरस्कार 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्य के पर्यावरण मंत्री मनोज ओराव ने कहा कि पर्यावरण विभाग की स्थापना पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण मंत्री ने चेतावनी दी कि आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण में तीव्र वृद्धि होने की आशंका है। उन्होंने जोर दिया कि इन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए केवल एक बैठक पर्याप्त नहीं है, एक समर्पित सलाहकार समिति की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने नियमित बैठकें आयोजित करने, पर्यावरणविदों से विशेषज्ञ सलाह लेने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अशोक प्रताप सिंह और पर्यावरण नियंत्रित एकीकृत संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाल बोस सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
1: हैदराबाद नाउ। The Telangana government has appealed to farmers to use the state's water and energy resources very carefully in view of the El Nino effect. Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka said that El Nino may peak by December. Rain is not expected until June or July, and he said the available water must be used only for drinking and for cattle. Agriculture Minister asked the farmers to avoid paddy and cotton this Yasangi season. He urged them to grow short duration crops that need little water. Chief Secretary Sanjay Jaju said rainfall is about 20% lower than last monsoon, so drinking water will get top priority for the next 10 months. War rooms, they will also be set up at state and district levels. These were Metro City updates.
0: अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: So beginning with Chennai, Manoj, Chennai is likely to witness cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between minimum 27 degrees Celsius and maximum 34 degrees Celsius. Bengaluru will experience partly cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 20 degrees Celsius, while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 21 degrees Celsius to 34 degrees Celsius in Hyderabad. Manoj.
0: जी, और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 13 अक्टूबर है। देश और दुनिया के इतिहास में

0: आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है.
1: Well, yes, today it's the International Day for Disaster Risk Reduction, and this promotes awareness and action to reduce disaster risks. Now, let's tell our listeners about the 2026 theme. It is Resilience Starts at Home, and this highlights the importance of safe homes and disaster preparedness, as it highlights that it should start at your home.
0: Ji.
1: And well, let us strengthen early warning systems. Also, we can build resilient communities. Third, we can work together to protect lives and livelihoods, and the International Day for Disaster Risk Reduction reminds us that.
0: 1999 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने. 2003 में आज ही के दिन अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए एक भारतीय छात्र का चयन हुआ. 2003 में आज ही के दिन नई दिल्ली में इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन प्रारंभ हुआ.
1: In the year 2005, announcement of the Nobel Prize in Literature for the year 2005 to the renowned German playwright Harald Pinter.
0: 2011 में आज ही के दिन दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले हिंदी के कठिन शब्दों की जगह उर्दू, फारसी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए. गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की सचिव वीणा उपाध्याय ने इस सिलसिले में सभी मंत्रालयों और विभागों को दिशा निर्देश जारी किया. और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है.
1: So we are beginning with?
0: जी, आज पुण्यतिथि है मुंशी अमीर अहमद मिनाई की. उनका जन्म 21 फरवरी 1829 को आजादी पूर्व लखनऊ में हुआ था. वे उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे. सन 1857 की क्रांति के बाद वे रामपुर चले आए और 43 वर्षों तक वहां रहे. दाग देहलवी के समकालीन अमीर मिनाई अपनी गजल सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं. अमीर मिनाई का नाम उर्दू अदब के मकबूल और बेहतरीन शायरों में शुमार किया जाता है. अमीर मिनाई ने 22 किताबें लिखीं जिसमें 4 गजल संग्रह है.
1: Let's also remember Al Martino. The jazz and traditional pop and standard singer Al Martino, he had his greatest success as a singer between the early 1950s and mid-1970s, being described as one of the great Italian-American pop crooners. Well, we are beginning this musical section as well, the songs which we are beginning with. This is Mary in the Morning and it's a morning song. Let's listen in.

0: Well, Jasper Cini, we professionally known him as Al Martino, he became known as an actor as well, particularly for his role as singer Johnny Fontaine in The Godfather.
1: It's quite as pretty as Mary in the morning, chasing a rainbow in her dreams so far away.
2: आज पुण्यतिथि है जरनैल सिंह की. उनका जन्म 20 फरवरी 1936 को होशियारपुर जिला पंजाब में हुआ था. वे फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है. उन्होंने भारत को विजय दिलाने में श्रेष्ठ डिफेंडर की भूमिका निभाई है. 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में जरनैल सिंह ने अपने स्ट्रोक द्वारा विजय दिलाकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने 1966 की एशियाई ऑल स्टार टीम का नेतृत्व भी किया. उन्हें 1964 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया.
0: टुडे इट्स आल्सो पॉल साइमन्स बर्थडे, द लेजेंडरी सिंगर सॉन्गराइटर एंड एक्टर एज वेल. And Simon's musical career has spanned 7 decades with his fame and commercial success beginning as half of the duo Simon and Garfunkel. And this was formed in 1956. The song which we chose for you, this is Here Comes the Sun by, and the guitar is being played by Beatles guitarist here for Paul Simon, George Harrison. Let's listen in.

0: आज पुण्यतिथि है निरूपा राय की। उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात में हुआ था। निरूपा राय को हिंदी सिनेमा में एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने किरदारों से माँ के चरित्र को नए आयाम दिए। वैसे उनका मूल नाम कोकिला बेन था। भारतीय सिनेमा में जब भी माँ के किरदार को सशक्त करने की बात आती है तो सबसे पहला नाम निरूपा राय का ही आता है। इस बेहतरीन अदाकारा को 3 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। निरूपा राय ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1946 में प्रदर्शित गुजराती फिल्म गण सुंदरी से की थी। निरूपा राय के सिने करियर पर नजर डालें तो पता चलता है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही। उन्होंने सर्वप्रथम फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई थी। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग इनकलाब, गिरफ्तार मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में भी वे अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में दिखाई दी।
1: Well, yes, Nirupa Roy, the eternal mother of Indian cinema, as we can say, and she has been revered as the queen of misery for her strength and for her portrayals of pain, sacrifice and maternal strength. And her career spans from 1946 to 1999. She appeared in over 250 films and won 3 Filmfare Awards and was honored with the Filmfare Lifetime Achievement Award in the year 2004. And she has left behind an immortal legacy in Indian cinema.
2: वो आदमी जिसने तेरे हाथ पर लिख दिया कि तेरा बाप चोर है, वो तेरा कौन था? कोई नहीं, मगर तू तो मेरा अपना बेटा था, मेरा अपना खून। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है?
3: लेकिन माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर।

0: आज जयंती है अशोक कुमार की। उनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर बिहार में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिने प्रेमियों को रोमांचित किया। उन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। अशोक कुमार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माए कुछ गीत।
1: बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर सोलापुर सोलापुर सोलापुर

0: intezari mein.
1: So both of these songs, they are in Ashok Kumar's voice. And this legendary artist and timeless actor has been a source of inspiration for generations of aspiring actors. And Ashok Kumar also used to say that his younger brother, which we will be talking about, Kishore Kumar, was like a son to him, given the significant age gap between them.
2: जी, और आज जन्मदिन है पूजा हेगड़े का. उनका जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है. वे भारतीय फिल्म अभिनेत्री तथा मॉडल हैं. वे मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम करती हैं. उनकी मुख्य फिल्में मुगामुदी, ओका लैला कोसम, मोहनजोदारो, हाउसफुल 4, महर्षि, अला वैकुंठ प्रेमूलू, दुव्वादा जगन्नाथम आदि हैं.

0: Well, some voices never fade. And Kishore Kumar's voice is one of them. From heartfelt romantic songs to unforgettable melodies, his music continues to connect generations. A legend who may be gone but will forever live through his songs.
1: आज पुण्यतिथि है किशोर कुमार की. उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ था. वे भारत के इतिहास में अमर गायक, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और गीतकार थे. किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था. किशोर कुमार ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कभी किसी से नहीं ली. किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी से हुई. किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही बांग्ला, तमिल, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी गीत गाए. किशोर कुमार ने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 10 से अधिक फिल्मों का निर्देशन भी किया. उन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं उनके गाए कुछ गीत.

0: कल की हमें फुर्सत कहाँ. सो मैनी इंस्पायरिंग सॉन्ग्स. वेल, किशोर कुमार इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड डायनामिक सिंगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, वी कैन राइटली से दैट. एंड किशोर कुमार वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स इन द इंडियन पब्लिक, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई मीन. एंड ही इज स्टिल नाउ वेरी पॉपुलर एंड नोटेबल फॉर हिज योडलिंग एंड अबिलिटी टू सिंग सॉन्ग्स इन डिफरेंट वॉइसेस.
1: जी, और अब ऐसा करते हैं, अपने श्रोताओं से तो विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर.
0: Well, yes, listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. And we thank you so much, listeners, for tuning in, all of you. Well, and we also hope that you have a superb, a mind-blowing day ahead. With that,
1: Namaskar.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
4: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी

0: वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32वें ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: सहायता करेगी। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
0: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: இதயம் முரளி படத்திற்காக டி தீரஜ் பாடியுள்ள பாடல்

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நவராத்திரி இசை விழாவில் இதுவரை மகாராஜபுரம் எஸ் கணேஷ் விஸ்வநாதன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். எஸ் சுபஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், டாக்டர் கே அசோக் அவர்கள் மிருதங்கம், ஹெச் சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கட்டம்.
1: நேர்களில் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை. நேர்களின் கவனத்திற்கு இன்று பிற்பகல் 1:10 இசை மலர் நிகழ்ச்சியில் ஜி ஐஸ்வர்யா அவர்கள் பாடியுள்ள பக்தி பாடல்கள் கேட்கலாம். ஆர் சுவாதி ஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், நெய்வேலி கே கணேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம். இந்த அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர இருப்பது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक

0: आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। 2 ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India will host the first BIMSTEC Home Ministers meeting today in New Delhi, where issues related to terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats will be discussed. In a social media post, Home Minister Amit Shah said, the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism, organized crime. He said through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Election Commission of India, ECI, has stepped up efforts to ensure that every eligible citizen is included in the electoral rolls, with special camps and voter assistance campaigns being organized across several states and union territories. Chief Electoral Officers, CEOs and District Election Officers, DEOs, are taking proactive measures to help voters register their names, correct personal details and resolve discrepancies in the voter lists in line with ECI instructions. Special camps are being organized.

0: और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्तमान और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमान को आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 7% कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: बैंकॉक में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैठक में अक्टूबर 2026 की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में उल्लेखनीय संशोधन हुआ है। IMF ने जुलाई के अनुमानों में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6.4% और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6.7% वृद्धि हुई है। अत्यधिक अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बावजूद कई संरचनात्मक मजबूती भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। इनमें मजबूत घरेलू मांग, सेवाओं की मजबूत गतिविधि और संरचनात्मक सुधार तथा जनसांख्यिकी शामिल है। भारत एक और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मिश्रित वैश्विक अर्थव्यवस्था माहौल का सामना कर रहा है। IMF ने प्रतिमान रूप में 2026 के लिए औसतन $95.74 प्रति बैरल अनुमानित उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों की बात कही थी, जो राजकोषीय मार्जिन के लिए लगातार एक बाधा बनी हुई है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। भारत की कुल टेली डेंसिटी भी मार्च 2026 के अंत में 93.26% से बढ़कर जून 2026 के अंत में 94.31% हो गई। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत ने साइप्रस की नौसेना को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में प्रशिक्षण, क्षमता विकास और तकनीकी सहायता की पेशकश की है। साथ ही दोनों पक्षों ने भारत साइप्रस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी विस्तारित करने की इच्छा दोहराई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और साइप्रस के नौसेना कमांडर कमोडोर निकोलस लुका के बीच साइप्रस के मारी नौसेना बेस में हुई बैठक के दौरान भारत ने सहयोग का प्रस्ताव रखा। रक्षा सचिव ने साइप्रस के विदेश मंत्रालय में राजनीतिक निदेशक राजदूत सलीना सांबोस से भी मुलाकात की। श्री राजेश कुमार सिंह 12 से 13 अक्टूबर तक साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। साइप्रस में अपना कार्यक्रम संपन्न करने के बाद रक्षा सचिव आधिकारिक यात्रा पर ग्रीस जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस

रहे हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। भूस्खलन ने बूढ़ी गंडक नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान अभी जारी रहेगा। बूढ़ी गंडक त्रिशूली नदी की एक सहायक नदी है, जो अगस्त में एक अन्य सहायक नदी में ग्लेशियर टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुई थी। सऊदी अरब ने रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने वाली हवाई रक्षा प्रणालियों की विफलता की जांच शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह हुए हमले में 13 लोगों की मौत और 300 से अधिक घायल हो गए हैं। जांचकर्ता पता लगा रहे हैं कि रक्षा प्रणालियों ने हमले की पूर्व चेतावनी क्यों नहीं दी। हुती मिसाइल और ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर से रियाद पर दागे गए थे। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने कहा है कि उसने कल रियाद को निशाना बनाकर दागी गई दो और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका। रियाद हवाई अड्डे के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों

0: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है नई दिल्ली में आयोजित 8वें ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।
1: यहां अपनी बात रखी, 30 साल की उनकी यात्रा, और वो मुझे कह रहे हैं कि वो मैं उनका मित्र हूं, वो आयु में भी बड़े हैं, अपने काम के संबंध में बड़े सफल व्यक्ति हैं, और सफल भी है, समर्पित भी है, और भारत के प्रति उनका जो प्यार है उसको मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है, और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका सम्मान करता हूं, उनका चाहक रहा हूं, और आज भी भारत के प्रति उनका प्रेम, वैश्विक मंचों पर भारत के प्रति उनकी भावनाएं हमेशा बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाली रही है, और इसके लिए मैं श्रीमान आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हर साल यह फोरम दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाता है। यहां इकोनॉमी पर चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल अफेयर्स पर विमर्श होता है, और इस बार पहली बार यह आयोजन भारत में हो रहा है। मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सही समय पर सही जगह चुना है। फ्रेंड्स, इस साल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की थीम दुनिया में उभरती नई पावर्स पर केंद्रित है। हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं, अपनी परिभाषा रही है, लेकिन 21वीं सदी में, खासकर तीसरे दशक में, एक बड़ा बदलाव हो रहा है।

Today, technology is power, data is power, knowledge is power, innovation is power. लेकिन साथियों, असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल यह है कि इसका यूज कैसे हो रहा है. क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर. पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड. और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर. साथियों, ये विचार भारत के लिए नया नहीं है. हमारे यहां कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विप्रीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. इसका भाव यही है कि ज्ञान, धन और शक्ति जिसके पास भी हो वो इनको यूज कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण है. यानी पावर का असली मूल्य उसके पर्पज में है और इसी सोच को आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है. साथियों, पावर टू एम्पावर करने वाला जो ये मानवीय भाव है, ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है. और भारत में हमने इसे अपनी गवर्नेंस में, अपनी कार्य संस्कृति में लागू करके दिखाया है. इसलिए मैं भारत के उदाहरणों से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा. साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं. और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं. हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है. और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर. साथियों, 12-13 साल पहले तक भारत में एक समय वो भी था जब मोबाइल

और इंटरनेट तक पहुंच भी अपने आप में एक शक्ति हुआ करती थी। जिसके पास एक्सेस था उसके पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, अपॉर्चुनिटीज थी। 2014 के बाद जब भारत में नई सरकार बनी, हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो भारत ने मोबाइल डेटा को एफोर्डेबल बनाने पर जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज एक छोटे शहर का विद्यार्थी भी डिजिटल लर्निंग से जुड़ सकता है। किसी गांव में छोटा दुकानदार भी नए कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। एक युवा भी ऑनलाइन नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। यानी भारत में कनेक्टिविटी ने सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटीज को भी कनेक्ट किया है। यही पावर टू एम्पावर है। साथियों, आप में से जो अतिथि विदेश से आए हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि आप भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को भी आजमा कर देखिए। हमारे यहां एक स्ट्रीट वेंडर और एक बड़े कार शोरूम का कारोबार अलग अलग है, उनका स्केल अलग है, लेकिन भारत में ये दोनों डिजिटल पेमेंट्स के एक ही इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की ताकत है। साथियों, भारत का जो भी सामर्थ्य है उसे हम अपने घर में ही रखने के समर्थक नहीं है, उसे हम ग्लोबल साउथ के साथ, अन्य पार्टनर कंट्रीज के साथ निरंतर साझा करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को हम दूसरे देशों से शेयर कर रहे हैं, ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार अपने डिजिटल सिस्टम्स विकसित कर सके। हमने कोविड के समय भी कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था जो ओपन सोर्स था। यानी हमारे ये निरंतर प्रयास है कि भारत की कैपेबिलिटी दूसरे देश के लिए भी पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोले। यानी हमारा सामर्थ्य मानवता को एम्पावर करें। साथियों, इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है। एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। वर्ष 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, नए सॉल्यूशंस बन रहे हैं। साथियों, पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए

कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, आपने जेम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में भी सुना होगा। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट तक सरकारी मदद सीधे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। इससे करप्शन कम हुआ है, देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सीधा रास्ता बना है। साथियों, पावर टू एम्पावर की यही सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था। तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा, या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य नहीं है उन देशों उन लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। भारत ने मानवता को एम्पावर करने वाला रास्ता चुना। हमने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दूसरे देशों के लिए भी सहायता का माध्यम बनी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। कुछ महीने पहले भारत में एआई इंपैक्ट समिट हुई और श्रीमान ब्लूमबर्ग जी ने भी उस एआई समिट की अभी बहुत तारीफ भी की है। इसमें हमने ह्यूमैनिटी के लिए एआई के उपयोग के साथ ही एनिमल्स को कैसे एआई का फायदा हो, इससे भी चर्चा का विषय बनाया। नंदन यहां बैठे हैं, आपको बाद में काफी जानकारी वो दे सकते हैं ये कैसे किया। यानी भारत जितना सक्षम होगा मानवता के लिए, दुनिया के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है, लेकिन उसके लाभ का विस्तार भी होना चाहिए। नेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे। साथियों, मैं आप सभी को एक और उदाहरण देता हूं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने एक बड़ा कमिटमेंट किया था। साल 2015 में हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल सोर्सेज से हासिल करेंगे, और भारत ने यह उपलब्धि नवंबर 2021

एक कमिटमेंट पूरा करने की बात नहीं थी, यह भारत की बदलती हुई एनर्जी जर्नी का भी संकेत था। साथियों, 2014 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 75 गीगावाट थी, आज ये करीब 300 गीगावाट हो चुकी है, यानी हमने लगभग 4 टाइम ज्यादा कैपेसिटी ऐड की है। साथियों, भारत में हो रहे इस एनर्जी ट्रांजिशन के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज हमारे यहां पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम जैसी स्कीम्स चल रही है। एक योजना घरों को सोलर पावर से जोड़ रही है, दूसरी योजना किसानों को सोलर एनर्जी पैदा करने और उसके यूज से इनपुट कॉस्ट कम करने का सामर्थ्य दे रही है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भारत को 30 गीगावाट से अधिक सोलर कैपेसिटी हासिल हुई है। इनसे हर साल करीब 30 मिलियन टन से अधिक कार्बन एमिशन कम होने का अनुमान है, यानी सोलर पावर प्रकृति की रक्षा करने का माध्यम भी बन रहा है और लोगों को एम्पावर भी कर रहा है। साथियों, दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है और उसका गवाह ये दशक भी है। साथियों, 21st सेंचुरी का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था, फिर ट्रेड हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो या एनर्जी सप्लाई हो, उसमें भी अड़चने आ रही है। दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तब तक एक नया संकट सामने आ जाता है। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था, वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए, वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं। इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रही है। अनेक देशों में एजिंग से जुड़े चैलेंजेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ट्रस्ट का है, भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी, भरोसा ये कि जो प्रॉमिस किए हैं वो निभाए भी जाएंगे, भरोसा ये कि संकट के समय हमारा पार्टनर कंट्री साथ खड़ा रहेगा। और यहीं पर भारत एक अलग मिजाज, एक अलग सोच के साथ आपके सामने है। साथियों, 21st सेंचुरी में भारत की प्रगति सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कहानी है। जब दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है, तो हर 5 में से 1 जेनरिक मेडिसिन भारत से आती है। जब डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट के सॉल्यूशन चाहिए, तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है।

जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है तो भारत के स्किल युवाओं पर भरोसा होता है। आज भारत में 2000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो दुनिया भर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। साथियों, ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया को एक स्टेडी पिलर की जरूरत होती है तो भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। वी डू नॉट ग्रो एट एनीवन्स कॉस्ट, वी ग्रो विद द वर्ल्ड एंड फॉर द वर्ल्ड। और साथियों, भारत जो करता है उसका क्रेडिट भी नहीं चाहता। दुनिया गर्व से कहती है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया। इस जीरो ने पूरी मानवता का लाभ किया, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी है। और आज भी भारत इसी भावना के साथ काम करता है। और आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जो विचार हैं उनमें भी वो सारी बातें दिखती है। इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने हैं, उनके अपने अपने हित रहे हैं, लेकिन भारत ने किस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाए, आप भी गौर कीजिए। हमने कैसी कैसी संस्थाओं को जन्म दिया और दुनिया में क्या क्या हुआ है उसका जरा एक बार तुलना करके देख लेना। हमने क्या दिया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमने क्या दिया? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने क्या दिया? बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी जिनसे सबका भला हो, हर जीवन का भला हो, ऐसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं। साथियों, भारत किन विचारों को लेकर सामने आया है ये भी आपके सामने है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारी सोच। वन अर्थ वन हेल्थ, ये हमारी दूरदृष्टि। यानी भारत जोड़ने पर और जुड़ने पर बल देता है, और इसमें भी पावर का इस्तेमाल दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। साथियों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है, और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स

0: अपग्रेड की जा रही है। आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है। 29 लेबर कोड्स अब 4 सिंपल कोड्स में सिमट चुके हैं। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। और हम यहां रुके नहीं हैं। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है। साथियों, हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों ने हमें एक मंत्र दिया था, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासि जानताम। आइए आज फिर उस मंत्र को दोहराएं। लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर। क्योंकि साथ चलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संवाद से हमारी समझ बढ़ती है और एक दूसरे को समझने से हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। यही है पावर टू एम्पावर। अपनी पावर को केवल अपनी प्रगति तक सीमित न रखना, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी नए अवसर बनाए। मुझे विश्वास है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम का यही मंच इसी भावना को आगे बढ़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: अभी आप नई दिल्ली में आयोजित 8वीं ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: நேர்களே, பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் புதுடெல்லியில் ப்ளூம்பர்க் புதிய பொருளாதார கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியதை கேட்டோம்.

0: விண்ணத்திரை இசை பாடல்கள் 11:10 தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है।
2: Power is not just the ability to move ahead. It is also the ability to empower others to move ahead. Bharat ka manna hai, competition jaruri hai, lekin compassion bhi hona chahiye.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस बदलाव के प्रमुख चालकों में से एक बनकर उभरी है और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर

0: गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से स्टार्टअप्स के लिए भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्पों को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में पैदल यात्रा के रास्ते और पुल बहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिनभर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोलचक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: செபி மூலம் இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: நேரம் 12:15 இருபதனுடைய ஆகாஷவாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் திரைகானம் ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து அம்பிகாபதி பட பாடல் பாடியிருப்பவர்கள் டி எம் சவுந்தரராஜன், பி பானுமதி.

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம். மீண்டும் மெல்லிசை பாடல்கள் நாளை பிற்பகல் 12:40 மணிக்கு.
1: வாங்க வாங்க, எவ்வளவு நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. இப்பதான் வீட்டுக்கு வர வழி தெரிஞ்சதா? காஃபி குடிக்கிறீங்களா?
2: அட, காஃபி எல்லாம் இருக்கட்டும், இது என்ன வீடு பூரா வாளி வாளியா தண்ணி நிரப்பி வச்சிருக்கீங்க?
1: அத ஏங்க கேக்குறீங்க? 2 நாள் தண்ணி லாரி வராதான், அதான் தண்ணிய புடிச்சு வச்சிருக்கேன்.
2: அது சரி, அதுக்காக ஏங்க கொசு எல்லாம் வளர்க்கறீங்க?
1: என்ன, கொசு வளர்க்கறோமா?
2: ஆமா, இப்படி தண்ணிய பிடிச்சு அங்கங்க திறந்து வைக்கிறதுனாலதான் கொசுவோட இனப்பெருக்கமே அதிகமாகுது. எப்போதுமே தண்ணிய மூடி வச்சு பழகுங்க, அப்பதான் டெங்கு போன்ற கொசுக்களால வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாம் பரவாம இருக்கும்.
1: அப்படியா, இது தெரியாம போச்சு. இப்பவே தண்ணி எல்லாம் மூடி வச்சிடறேங்க.
2: நோயற்ற சமூகத்தை உருவாக்குவோம்.
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி என்று.
4: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
5: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम 1 महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
6: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
4: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह

0: भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज 3रा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: The Prime Minister said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said the GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
2: Power ke purpose par jo focus hai, yahi soch governance mein bhi zaruri hai. Sarkar ke paas authority hai. लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. Speaking on the occasion, Union Home Minister Amit Shah said BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Mr. Shah reiterated that India respects the sovereignty and territorial integrity of all countries and believes in the peaceful resolution of

0: his outstanding performance in the one-day international series against the West Indies. Denmark Open badminton tournament kicks off in Odense today. PV Sindhu will take on Yvonne Lee of Germany in the women's singles round of 32 match this evening, while Tanvi Sharma will be up against Natsuki Nadera of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty, addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today, and Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा क्लाइमेट चेंज हो वाटर गवर्नेंस हो पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे नए अवसर पैदा करे
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो सशक्त हो और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक

0: 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
0: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन लें, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ

0: द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध समावेशी नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज सोडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले

0: मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை. நேரம் 2:30. நேர்களினை கேட்கலாம். மக்கள் பணி தொடங்கி நாட்டுப்பணி வரை டெல்லி செய்தி பிரிவு வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி.
2: ஏ ஆகாஷ்வாணி ஹே விசேஷ் ஸ்ருங்கலா ஜன்சேவா சே தேஷ் சேவா கே 26வே சன்ஸ்கரண் மே பிரஸ்துத் ஹே பரிசர்ச்சா. गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा, इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनिजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात की कमान संभाली, तब लक्ष्य यही था कि गुजरात की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, गुजरात का नाम भारत के साथ साथ विदेशों में भी पहुँचाया जाए। गुजरात से लेके विश्व मंच तक का सफर, उभरता भारत, विश्व मंच पे डटा भारत, आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास विशेषज्ञों के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी आकाशवाणी समाचार में अम्बेसडर अशोक सज्जनहार का और श्री अतुल अनेजा का। दोनों ही हमारे पैनलिस्ट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे अपनी बात बहुत ही बखूबी से रखते हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है आकाशवाणी में। अम्बेसडर सज्जनहार, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर हम बात करें तो साल 2003 में शुरू हुआ ये समिट, एक इन्वेस्टर समिट के रूप में शुरू किया गया था। बीते सालों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म बन गया है, जो सरकारों को, बिजनेसेस को, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और थॉट लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देता है, वहां पे सबको साथ लेकर आता है। अब इतने साल बीत गए और वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमीकंडक्टर्स, एआई, एरोस्पेस जैसी नई तकनीकों पर भी बात करता है। अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो उसका फोकस एरिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल ग्रोथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े बड़े विषयों पे चर्चा करेगा। और ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जो भारत का फोकस है विकसित भारत की ओर, उसकी तरफ भी चर्चा करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी एम्बेसडर सज्जनहार कि आपको लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने देश को एक दिशा दिखाई कि भारत के ग्लोबल स्टेज पे राइज का एक ये शुरुआती तार जोड़ा है, आप वाइब्रेंट गुजरात समिट को वैसे देखते हैं?
4: जी, बहुत धन्यवाद दीक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जैसे आपने अभी जिक्र किया, 2003 में इसकी शुरुआत हुई और हमें देखना होगा जो इसकी शुरुआत उस समय क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है जो 2002 में कम्युनल राइट्स हुए थे वहां पर गुजरात में हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके पहले हमने देखा है 2001 में भुज में बहुत ही भयानक वहां पर भूकंप आया था, उससे बहुत ही तहस नहस वहां पर हो गया था। गुजरात को एक नया प्रोफाइल देने के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, उसकी शुरुआत की गई 2003 में और तब से नए नए जो कार्यक्रम थे, नए नए जो आइडियाज थे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर वो ऑटोमोबाइल्स हो या फिर उस प्रकार के जो फॉरवर्ड लुकिंग तरीके बनाए गए हों, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय शुरुआत की। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई और फिर हर 2 साल बाद उसको वहां पर आयोजित किया गया। तो अलग अलग तरीके से वहां पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ लेकर आए गए। 2003 के बाद

0: 2005 को फिर से शुरुआत की गई। 2005 से 2007 में हर 2 साल बाद इसका हुआ। और अब अगर देखा जाए तो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां पर मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो केवल गुजरात में नहीं, अब हम देख रहे हैं जो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सब नए नए से वाइब्रेंट अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स के लिए इसको आगे बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और आपने जैसे अभी कहा, जो आगे ले जाते हुए 2 साल के बाद फिर से ये वाइब्रेंट गुजरात होगा, तो उसमें ये बिल्कुल तार है विकसित भारत 2047 में आगे चलने का। और इसमें जो नए नए तरीके आए हैं, क्योंकि शुरुआत तो पहले की गई थी इन सभी क्षेत्रों से, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, फिर धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दहेज का वो वाले सब वहां पर किए गए, परंतु अब इसको और बहुत ही विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कि नए तकनीक जो हैं उनको भी साथ में लाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लाया जा रहा है साथ में, जिससे कि आगे चलते हुए जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है, जो हम 2047 तक अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे, विकसित भारत को हम अचीव करके रहेंगे, वही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ जो वाइब्रेंट गुजरात की जो कड़ी शुरू हुई थी 2003 में, वो अभी तक चलती आ रही है और इसको बिल्कुल आगे ले जाते हुए न केवल गुजरात में परंतु पूरे देश में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं, और पूरे देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
1: अम्बेसडर सज्जनार, आपने काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अगर हम G20 समिट की बात करें या G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत के 60 से ज्यादा शहरों में होस्ट की गई। G20 की अगर हम थीम की बात करें, तो G20 की थीम भी भारत की प्रेसिडेंसी में थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उससे पहले कि हम इसमें चर्चा करें, हम सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर समिट को होस्ट करते हुए क्या कहा।
2: एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए, जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
1: मिस्टर अनीजा, G20 समिट ने भारत की डिसाइसिवनेस को एक गति दी है और ये भी दर्शाया कि हम इंक्लूसिव भी हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी हमें दिखाया गया है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है?
3: देखिए, G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि भारत अपने आप को एक ब्रिज की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सका, जिसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ना था। और ग्लोबल साउथ को जोड़ने की अगर बात करें, तो फिर जो है 56 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सदस्य बने G20 के। तो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव फील या एक इमेजिनेशन प्रदान की गई G20 को। साथ में बात हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जो इसकी मेन थीम थी कि आप अगर जोड़ना चाहते हैं देशों को या लोगों को, डाइवर्स लोगों को, तो उसकी एक बुनियाद सोच है जो है कि एक दुनिया, एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार है तो आपका उसमें दायित्व बनता है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको आगे लेके चले। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ये G20 में जो दर्शाया गया, जिससे आप एक वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पे आप ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को आप जोड़ सकते थे। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके पीछे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो G20 की थीम थी वो भी अभी आएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन या रशिया के बीच में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो। तो वे कॉमन थीम जो थी, जो शुरू होती है वाइब्रेंट गुजरात से और एक तरह से कल्मिनेशन पॉइंट या एक तरह से मैच्योर लेवल पे आती है G20 के अंदर।
1: अम्बेसडर सज्जना, G20 समिट में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया गया और साथ ही साथ जो मैंने पहले भी कहा कि G20 को भारत ने दर्शाया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को
0: या विदेश मंत्री या अन्य मंत्रियों के लेवल पर उन्होंने इसमें शिरकत की, और फिर जो भी उनसे पूछा गया, जो उनकी क्या

शंशाएं हैं इसमें, तो सभी के चाहे वो डेट हो, चाहे उनका फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन लेड ग्रोथ हो, ये सभी चीजें इसमें जो G20 की बातचीत हुई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया और जैसे अतुल जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जो करीब 200 मीटिंग की गए 60 शहरों में ये

0: फ्यूचर वो था, वसुधैव कुटुंबकम था, परंतु उसको और एक्सपैंड कर दिया गया और इस हिसाब से हमने इसको आगे लेकर जाएगा।
1: मिस्टर अनेजा, G20 समिट को लेके एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस पूरे समिट के अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी G20 के साइडलाइंस पे लॉन्च किया गया, और GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी इंटरनेशनली पसंद किया गया, सपोर्ट मिला, और अब इसके 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो मिस्टर अनेजा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च करने के पीछे की सोच क्या थी?
2: दीक्षा, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे और कम से कम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो। ये एक ग्लोबल एक तरह से मिशन है भारत की, खास करके जो देश जिनके पास कच्चा तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। और खास करके हम देख रहे हैं जो ईरान में युद्ध हो रहा है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा फोकस है। तो एनर्जी के ऊपर बिना ऊर्जा के, बिना क्लाइमेट चेंज को रोकते हुए, रिन्यूएबल्स के बिना हमारी आगे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बनेगी। ये हमारी एक बुनियादी एक सोच है। G20 में जो वासुदेव कुटुंबकम या जो दो स्लोगन उसके आए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अब अगर आप इनको देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सोच ये है कि भारत आइडियोलॉजी की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है, अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंगेजमेंट रही है G20 के अंदर, उसमें ये एक बड़ी खास बात थी कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो तो आपका एक खास दर्जा रहता है और बाकी देशों को, खास करके ग्लोबल साउथ को जोड़ने में उसमें तो आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एलिमेंट भी इसके अंदर गया था ये G20 के अंदर। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहूंगा बात, अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें तो भारत, आपको याद होगा इन्हीं दिनों में ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट होते थे तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा उन समिट्स में एक से ज्यादा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारा एक तरह से सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, एक विरासत है हमारी। तो वो आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से अलग होके आप डीपर जा रहे हैं और आपकी अपनी सोच एक तरह से एक सिविलाइजेशन सोच और बढ़ रही है। और ये जो हमारी एंगेजमेंट्स, एक्सटर्नल एंगेजमेंट, G20 हो या जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है कि शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बना है जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आपने काफी अच्छे से हमें समझाया पूरी जो इसके पीछे की सोच थी उसको। आगे बढ़ते हुए अब मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से बात करना चाहूंगी ब्रिक्स समिट के बारे में, और अम्बेसडर सज्जनार, सबसे पहले मैं आप ही की राय जानना चाहूंगी। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, और हमने देखा है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखता है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए अभी दिल्ली में ही पिछले महीने 12 और 13 सितंबर को लीडर्स समिट दिल्ली में ब्रिक्स का होस्ट किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री के कुछ इम्पोर्टेंट अंश जो उन्होंने ब्रिक्स समिट में लीडर्स समिट को एड्रेस करते हुए बोला।
3: भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: अम्बेसडर सज्जनार, ब्रिक्स की एक्सपैंडिंग मेंबरशिप और बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इस ग्रुपिंग को एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड और ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट जो हमने जिसकी बात भी करी कि प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाए, और इस प्रोसेस में भारत को किन कंपीटिंग नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है?
0: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं इसको

0: ब्रिक्स समिट जो हुआ है 12 और 13 तारीख को सितंबर को, और जो इससे पहले G20 हुआ 2023 में, मैं समझता हूं जो चुनौतियां भारत के लिए दोनों समय बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अधिक थी, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी ही चुनौती थी जब एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बिल्कुल ही पूरा जो विश्व था वो अलग थलग दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि एक तरफ उस समय रूस और चीन एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो सब खड़े थे, और ये भारत के ऊपर सब कुछ मयसर हुआ जो हम दोनों को साथ में लेकर आए और एक प्रकार का जो यूनानिमिटी अग्रीमेंट वहां पर लेकर आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, आपको मालूम है जो शुरुआत हुई थी 2001 में, पहली मुलाकात हुई 2006 में जब विदेश मंत्री मिले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, 2009 में सबसे पहली बार रूस के यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ। परंतु अब पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हालात पूरे विश्व में इतने ज्यादा उथल पुथल हो गए हैं, जो बहुत देश चाहते हैं जो वो ब्रिक्स के सदस्य बने, और हमने देखा है जो 2023 में जोहानसबर्ग के समिट में, ब्रिक्स के समिट में, यहाँ पर पहले 5 सदस्य थे, अब उससे 11 सदस्य हो गए हैं। और इसमें ये जो ब्रिक्स के देश हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब और भी बहुत देश हैं वो अपना हेजिंग चाहते हैं, जितना ज्यादा सभी मिलकर, ये देश मिलकर साथ में काम कर सके वैसा ही वो होना चाहिए। तो भारत ने ये ब्रिक्स का जो समिट है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि G20 में हमने किया था, वैसा ही हमने अग्रीमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं, और मैं समझता हूँ जो आगे चलते हुए ये भारत ब्रिक्स को भी आगे लेकर जाएगा और सभी देशों को साथ में मिलाकर इनको आगे ले जाने में सफल हुआ है और आगे ये सफल होगा। एक चीज मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा, जो जब G20 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं, तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा हमने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी उस समय ये शुरुआत की, और मैं समझता हूँ जो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी देशों को साथ में लाने में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहेगा।
1: अम्बेसडर सज्जनहार की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी अम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि हम कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अगर कनेक्टिविटी और बाकी इसके अलावा ऑल्टरनेट रूट की भी तैयारी की जा रही है, और इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने वेस्ट एशिया में काफी समय तक अपना करियर बनाया है, वहां पे आप रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर अभी जो हम हालात देख रहे हैं वेस्ट एशिया के, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वहां से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद हुआ तो काफी देशों को दिक्कतें आई, ना कि सिर्फ भारत को, तो अगर इस पूरे प्रकरण में भारत एक ऑल्टरनेट रूट और एक स्टेबल रूट बना के दुनिया के सामने रख पाता है, तो उससे भारत की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से ग्रो करेगी। और दूसरा प्रश्न आपसे अम्बेसडर सज्जनहार और मिस्टर अनीजा दोनों से आपसे मैं ये करना चाहूंगी बहुत ही संक्षेप में, कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वो कैसे ट्रांसलेट करती है जब हम किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में देखें तो वहां पे निर्णय निकल के आते हैं, या फिर किसी बायलैटरल मीटिंग में भी देखें तो काफी मुसीबतों का भी हल निकल कर आता है। इन दोनों ही प्रश्नों पे सबसे पहले मिस्टर अनीजा आपका जवाब चाहूंगे और फिर अम्बेसडर सज्जनहार का।
2: दीक्षा, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। आप देखेंगे कि अभी इस वक्त जो है, हम दो मेन मैरिटाइम चैनल्स हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा बाबल मंदाब जो रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। दोनों में ही एक तरह से जो ट्रेड होती है या वहां से जो शिप्स निकलते हैं, सिवियर बाधा पड़ी हुई है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये रूट्स का जो मैरिटाइम रूट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है, वो हमें देखना है कि ऑल्टरनेट लैंड रूट्स कौन से आ सकते, यानी कि कॉन्टिनेंटल रूट्स की अब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि आज हॉर्मुज है, बाबर मंदाब है, और कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका भी कुछ हो जाता है चीन और यूएस के बीच में, ताइवान के ऊपर जिस तरह से टकरार है, तो फिर हम कहां जाएंगे? तो इसलिए भारत की ऑल्टरनेटिव रूट्स, जैसे अम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हमें देखना है कि INSTC का फाइनली अगर हम देखें उसका रूट ईस्टवर्ड्स

0: आता है रशियन फार ईस्ट की तरफ, व्लैडिवोस्टोक की तरफ, वहां से नॉर्थ आर्कटिक रूट निकल रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां से चैनल्स निकल रहे हैं। हमें वो ज्योग्राफी भी देखने की जरूरत है क्योंकि वो फिर ना मलाका को क्रॉस करते हैं ना ये हॉर्मुज या बाबल मंदा बलि आपकी प्रॉब्लम आती है। और तीसरा जो है व्लैडिवोस्टोक में चेन्नई। तो मुझे लगता है कि ये लैंड रूट्स और ये जो ओशियनिक बॉडीज हैं जहां पर विवाद कम है वहां पर हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जो दुनिया के हालात है ये इन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जल्द से जल्द इनको एक्टिवेट करें। ये आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जब मैं दिल्ली में था ये बात होगी शायद 2000 या 2001 की, तब से बात चल रही है, लेकिन अब एक अर्जेंसी आ गई है कि इन रूट्स को जो है पूरी तरह से कायम किया जाए, खास करके अभी जो रिसेंट हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हॉर्मुज को लेके और बाबर मंदाब को लेके। मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात आपकी दीक्षा जो थी वो है पर्सनल केमिस्ट्री की, प्रधानमंत्री की। ये एक बड़ा ही यूनिक एलिमेंट आया है कि पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री की जो कनेक्ट है, चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक तरह से आता है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि दुनिया में कई लीडर ड्रिवन डिसीजन होते हैं, तो उसमें बहुत एक तरह से भारत के लिए बहुत फायदा है क्योंकि आपके जो टॉप लीडर्स के साथ जो है सिर्फ आपकी इंटरेस्ट से नहीं बट पर्सनल इक्वेशंस जो है वो बहुत अच्छी हैं। उसका मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिल रहा है। हम देख रहे थे इंडोनेशिया में भी विजिट हुआ, जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो प्रधानमंत्री के साथ पूरे विजिट में साथ थे, रिसीव करने के साथ साथ जो भी पूरा विजिट था, जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से वेलकम किया गया प्रेसिडेंट प्रबोवो ने, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल एलिमेंट एक बीच में आके एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि ये एक एलिमेंट जो है वो हमारी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि मिस्टर अनेजा ने कहा, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप अपने विचार इस चीज पे हमारे साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ किस तरीके से ट्रांसलेट होती है और उसका कितना फायदा मिलता है भारत को डिप्लोमेटिकली।
2: जी देखिए, ये बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि लोग ये कहते हैं जो बेसिकली दो देशों के बीच में अगर जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट पर होते हैं, वो उनके हितों पर होते हैं, वो उनके पर्सनल रेपो पर्सनल रिलेशन पर नहीं होते हैं। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमने देखा है जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना सहज तरीके से सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलना होता है, और चाहे जो पूरे विश्व के जो नेता हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों देशों के बीच में, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको अपने पर्सनल रेपो से, पर्सनल रिलेशन से एकदम वो ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का, जो वो सभी विश्व नेताओं के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखते हैं। एक जो दूसरा आपने प्रश्न किया था, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊं, जो कनेक्टिविटी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, देखिए हॉर्मुज में करीब पूरे विश्व का 20% जो तेल है वो वहां से जाता है, और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी को, तब से हम देख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया है। और ये इसकी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को, जो विकासशील देश है उनको, और उनमें भी भारत जैसे देश को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि भारत करीब अपना 85% जो तेल है वो बाहर से आयात करता है। और उसके अलावा अगर हम देखें जो गैस है, LPG है, LNG है, करीब जो भी हम जितना भी आयात करते हैं उसमें करीब 90% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसलिए यहाँ का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन गया है, और इसको इधर से तेल का आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसीलिए भारत हमेशा यही कहता है जो बातचीत से इस मसले को हल करना चाहिए। यही बात बाबेल मंडेप की है, यहाँ पर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% तेल जाता है तो बाबेल मंडेप का करीब 12-15% तेल जाता है। तो इसीलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हो गए हैं, और इसीलिए जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अब INSTC की बात हुई, IMEC की बात हुई, और फिर अब ये पोलर रूट की बात है क्योंकि जो रूस के उत्तर से जो पोलर रूट जाता है, और इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान रहेगा, जो हमको और भी जो हर प्रकार के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि

0: याद है ये जो INSTC 1997 में जब मैं मॉस्को में हुआ करता था तब की हमने शुरुआत की, परंतु ये इसको आगे हम नहीं ले जा पाए क्योंकि हमेशा ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस बने रहे। परंतु अब हमको ये जरूर प्रयास करना है जो उसमें हो चाबहार को भी हमें डेवलप करना है और जल्दी से इस क्षेत्र को बिल्कुल सभी मिलकर इसमें शांति लानी चाहिए जिससे कि हम इसको आगे जो INSTC और चाबहार को और आगे ले जा सकें।
1: मिस्टर अनेजा, मेरे पास अभी दो और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं दोनों ही विशेषज्ञों से आपकी राय जानना चाहूंगी। तो मिस्टर अनेजा, आपसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस दुनिया के 7 मेजर कैट स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी की बात है, ये वाइल्ड लाइफ की बात है। तो अगर इसके बारे में आप हमसे चर्चा करें तो इसके आउटकम्स आपके हिसाब से कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसको हम कैसे प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे?
2: भारत की जो अप्रोच रही है पूरे विश्व के लिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, खास करके अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में जो एक तरह से संतुलन की जरूरत है जिसमें आपके जो ग्रीन कवर है, अमेज़न के फॉरेस्ट हैं जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन एलिमेंट है, इसके बीच में एक संतुलन लाने की बहुत जरूरत है क्योंकि तभी विश्व में बैलेंस रहेगा। और जिसका इफेक्ट अगर बैलेंस ना रहे तो फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर से लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये संतुलन बनाए रखें और यही अप्रोच भारत की रही है। जहां तक के सवाल आ रहा है बिग कैट अलायंस का, तो ये एक बहुत जरूरी उसमें एलिमेंट था। हमने देखा कि भारत के अंदर एक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल इनिशिएटिव था कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो आपको याद होगा 2022 की शायद बात है कि जब हम चीता को बोट्सवाना से और साउथ अफ्रीका से लेके आए यहाँ पर भारत में, तो बिग कैट अलायंस का और उसके तरफ जो फोकस है वो उस बात से बिल्कुल दर्शाता है, मुझे लगता है। दूसरी बात ये भी है कि हम बिग कैट अलायंस हो या वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन हो, उसको टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुकी है सिर्फ भारत के टूरिज्म के लिए। अफ्रीका में देखा है कि किन्या में जैसे तंजानिया के बॉर्डर पे आप देखते हैं कि हजारों की तादाद पर लोग जाते हैं एनिमल माइग्रेशन को देखने के लिए।
1: मसाई मारा
2: तो एक तरह से मसाई मारा वही एलिमेंट है कि सिर्फ उसके कई पहलू हैं, एक तो जो बैलेंस की मैंने बात की है और दूसरी एक जो बात है कि हम अपने एनवायरमेंट और अपनी वाइल्ड लाइफ से ज्यादा और ज्यादा जुड़े। हम आजकल देख रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है जो रोके जा रहे थे उनको भी खोला जा रहा है, तो इसलिए ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल एक इनिशिएटिव है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, आखिर में चलते चलते मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। हमने इतने बड़े मुद्दों पे चर्चा करी और अब मैं चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही सॉफ्ट पावर की तरफ आना चाहूंगी, और वो है योगा डिप्लोमेसी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, उसी साल योगा डे UN ने डिक्लेयर कर दिया, और आज अगर हम देखें तो योगा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है और ना ही सिर्फ एक व्यायाम का रूप है, बल्कि पूरे दुनिया में लोग योगा से प्रभावित हैं, उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। तो योगा को एक सॉफ्ट पावर और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक टूल के रूप में अगर हम देखें तो कैसे इसने पूरा एक रूप निभाया है, और योगा के साथ अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी को भी जोड़ दें, आप कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के फेवर में कैसे काम करती हैं?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला 2014 में, आपको याद होगा जो पहली बार वो सितंबर 2014 में वो गए थे वहाँ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए, और तब मुझे याद है जो उन्होंने कहा था, और ये उनका ही था आउट ऑफ द बॉक्स उनका ये थिंकिंग था, जो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, भारत की कोई ऐसी देन देनी चाहिए पूरे विश्व को जिससे कि वो पूरे विश्व को उसका फायदा होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा जो हमको एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमें मनाना चाहिए, और मुझे याद है जो तब हमारे जो सभी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जो अपनी डेलीगेशन थी उन्होंने कहा जो उनको बहुत ही ये ऐसा इसमें कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं लगा, परंतु फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं इसको हमको आगे लेकर जाना चाहिए, और फिर उसी साल हमने देखा है जो करीब पूरे विश्व के 193 देश हैं

0: परंतु उनमें से 177 देशों ने मिलकर इसको प्रमोट किया और इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस जून को उन्होंने माना और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो हर साल पूरे विश्व में ये मनाया जाता है और बहुत ही चाव से मनाया जाता है, बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से, इसको ऊर्जा से इसको मनाया जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये सॉफ्ट पावर की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बनकर उभरा है और इससे पूरे विश्व में भारत का एक डंका बजता है, जो केवल एक इसको एज एन एक्सरसाइज लिया जाए, परंतु ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक होलिस्टिक तरीका है जो अपने को डेवलप करने का, अपने को आगे ले जाने का, और इससे पूरे विश्व में इसका भारत की जो छवि है इसको और भी और आगे लेकर जाया गया है। तो मैं समझता हूँ योगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पूरे विश्व में, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, यही मैंने पहले भी कहा था, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लीडरशिप है, जो विजन है, वो इन सभी चीजों में दर्शाता है, जो कैसे हम जहां पर लोग नहीं सोचते जो कोई पॉसिबिलिटी है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं, उसमें ही संभावनाएं निकाल लेते हैं, और उसी से पूरे विश्व में भारत का जो योगदान है उसको और आगे ले जाने में सफल रहे हैं।
1: अम्बेसडर सज्जनहा और मिस्टर अनिजा, दोनों विशेषज्ञों ने ही काफी विस्तृत रूप से सारे ही विषयों पे हमें जानकारी दी, और जो हमारा डिस्कशन रहा है आज उससे मेरे लिए तो काफी ही इनलाइटनिंग रहा है। आई एम श्योर जो भी लिसनर्स इस डिस्कशन को सुनेंगे उनको ये समझ में आएगा कि पिछले 25 वर्षों की जो प्रधानमंत्री की जर्नी रही है वो सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में उन्होंने जो किया वो तो किया ही, उसके साथ साथ विश्व मंच पे कैसे भारत आगे जाए उस पे भी काफी काम किया गया है। आप दोनों ही विशेषज्ञों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद दीक्षा, बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनिजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: இதுவரை மக்கள் பணி தொடங்கி நாட்டுப்பணி வரை டெல்லி செய்தி பிரிவு வழங்கிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள்.
4: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
3: இனி கேட்கலாம் திரைகானம். நிகழ்ச்சியின் முதலில் ஒலிக்கிறது உன்னை நான் சந்தித்தேன் படத்திற்காக KJ யேசுதாஸ் வாணி ஜெயராம் பாடிய பாடல்.

குரு படத்திற்காக எஸ் ஜானகி பாடியது.

0: இந்திய ஆங்கில செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
3: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निःशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर लागू होगा। 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेनदेन इससे अप्रभावित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। श्री गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास निर्वाचन आयुक्तों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने का रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता की दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने नेताओं ने इन घटना की निंदा की है। मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव चौधरी ने कहा है कि हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल गठित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Maharashtra State Revenue Authority. The advisor will assist in transferring land records in favor of Munitions India Limited, coordinating with revenue authorities and completing their mutation process. Selection will be through an interview or interaction. Applications along with the required resume and supporting documents must be submitted within 15 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up www.munitionsindia.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में निजी सचिव का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आयु सीमा है 38 वर्ष। ये पद अनारक्षित है। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के तुलजापुर, हैदराबाद और गुवाहाटी स्थित ऑफ कैंपस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.tiss.ac.in। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए www.tiss.ac.in। आर्मी पब्लिक स्कूल सुखना में इन पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उप प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक अथवा मुख्य अध्यापिका। अर्हता और अन्य मानदंडों के लिए देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल सुखना की वेबसाइट www.apssukhna.com। 31 मार्च 2027 तक तदर्थ आधार पर शिक्षकों की भी भर्ती की जानी है। पद हैं स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, पीआरटी कंप्यूटर विज्ञान, पीआरटी सभी विषय और पीआरटी शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, कराटे अनुदेशक। महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी तथा टीजीटी बांग्ला और नेपाली। कृपया आर्मी स्कूल सुखना की वेबसाइट देखिए www.apssukhna.com। आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली में ये पद रिक्त हैं। स्वचालन एवं एआई विशेषज्ञ, औद्योगिक अभियांत्रिकी, निरीक्षण स्वचालन तथा उत्पाद विकास प्रबंधक तकनीकी। पारिश्रमिक प्रतिमा 1,25,000 से 1,75,000 रुपए रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए वेबसाइट www.aweil.in। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एक पद, निजी सचिव तीन पद और आशुलिपिक एक पद। पदों से संबंधित विवरण, पात्रता मानदंड, अपेक्षित अनुभव, आयु सीमा आदि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.nha.gov.in। मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक प्रशासन रिक्तियां दो, प्रशासनिक अधिकारी रिक्ति एक, निजी सचिव रिक्तियां तीन, सहायक अनुभाग अधिकारी 15 रिक्तियां, वैयक्तिक सहायक 16 रिक्तियां, स्टाफ कार चालक 4 रिक्तियां। पद परिचय, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप और तैनाती स्थानों का विस्तृत विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.stqc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन जो समर्पित है देवी चंद्र घंटा को, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों हमारे बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है वही आपकी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी ये जो मुलाकात होती है, इसमें आज भी उसी तरह से होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहती है बराबर हमारी नजर, और हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संक में मैं हूं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
1: नमस्कार मोनीश, एंड वाइल यू वर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम, आई वाज जस्ट वंडरिंग क्या मोनीश भूल गए कि उनके साथ एक को एंकर भी है।
0: ऐसा कैसे लगा आपको?
1: वेल, नमस्कार आधा, मोनीश ने ऑलरेडी पूरी तफसीर से आपको बता दिया है व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। सो यस, हमेशा की तरह ताज़ा तरीन खबरें तो होंगी ही, बट बिकॉज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो नेचुरली वील गो एंड डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। And of course, the festivities can be, you can say, smelled in the air, Mohanish. और नवरात्र शुरू हो चुके हैं, लोगों ने पटाखे भी छोटे छोटे बजाना शुरू कर दिए हैं चोरी छुपे, सो दैट काइंड ऑफ यू नो गिव्स यू अ फ्लेवर ऑफ द फेस्टिव सीजन,
0: फेस्टिविटीज इन द ईयर। यस,
1: एब्सोल्युटली। सो व्हाई नॉट स्टार्ट टुडेज शो ऑन दैट पॉजिटिव नोट विद द हेडलाइंस।
0: श्योर।
1: Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty, addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए बताया एक महत्वपूर्ण मंच।
1: UPI merchant discount rate on select person to merchant transactions to be implemented after Diwali.
0: IMF ने 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कर दिया है 7%।
1: कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद टू बी ऑन अ 2-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम टुडे।
0: और शेफाली वर्मा और शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए ICC महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
1: And now, as always, Monish, we start our Parikrama with our special segment, Dateline India. Today, we'll talk about International Day for Failure and World Thrombosis Day. And if you talk about the first topic, that is the International Day for Failure, before we start, let me ask you a question. Have you ever worked really hard for something, giving it your best, and still did not achieve the desired results?
0: Well, so many times it does happen, unfortunately, yes. और हो सकता है दोस्तों आपको भी कोई परीक्षा ऐसी देनी पड़ी हो जिसे आप कभी पास न कर पाए, हो सकता है कि नौकरी का कोई मौका आपके हाथ में बस आते आते रह गया हो, या हो सकता है कि आपका बिजनेस कभी सफल न हुआ हो, या जिस सपने पर आपका भरोसा था कभी वो सच न हुआ हो।
1: Well, at that moment, we probably wonder, well, am I good enough? Will I ever succeed? Should I even try again? Well, today we have a message for you. Your failure does not define you. Your response to failure does. In fact, Monish, agar aap meri baat kare, mera personal manna ye hai ki failure jaisi kuch cheez hoti hi nahi hai. You know, because failure is a very, very, you can say, kaise ek certified word de diya aapke prayas ko. But if you have tried and given your best, then that was definitely

0: What a beautiful, befitting tribute to those who keep on moving. Yes, kabhi kabhi dosto, zindagi aisa imtihan leti hai jiski humne kabhi ummeed nahi ki hoti. Aur jab sab kuch namumkin sa lagne lagta hai saira, to hume ye yaad dilane ki zarurat hoti hai ki hum jitna sochte hain usse kahin zyada mazboot hain. Jab aap kisi cheez mein apna pura dil laga dete hain aur wo kaam nahi hota to dukh to hota hai. Kabhi kabhi sharmindagi bhi hoti hai. कभी कभी आप खुद की तुलना दूसरों से कर बैठते हैं और कभी कभी आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें. कभी ऐसा हुआ सायरा क्या?
1: आई थिंक ये सबके साथ किसी ना किसी फेज में होता है और बहुत ही फितरी चीज़ है. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू फील दैट वे. बट व्हाट शुड नॉट हैपन इज दैट यू शुड यू नो launch into a gloom of, you know, despair. Aisa nahi hona chahiye. Because, you know, I'm recalling a very personal anecdote of a friend. He said that ek baar wo log holiday karne gaye aur un log ko phone aaya unke padosi ka ki unke ghar se bahut zyada dhuen aur aag lagta hai lag gayi hai. It was probably a short circuit. They rushed back and when they came back, everything in the house, from the smallest needle to the fridge, everything was burnt to ashes. But he said a very, very important thing that has stayed with me, Monish. He said that, Saira, maine apne us ghar ko dekha, ek-ek cheez ko dekha, ek aansu tapka, lekin maine usse foran pocha aur kaha, मैं ये सब फिर से बना सकता हूँ. शुक्र है ऊपर वाले का कि हम सब बाहर थे. सो इट इज़ अ वे टू लुक एट यू नो विद पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ. दैट वो जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जब तक आप से ही ये जिंदा लम्हा है, तो अगर आप जिंदा हैं तो लम्हा भी जिंदा है. और आप उस जिंदगी में बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं. इट कम्स विद लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सो ऑल द मटेरियलिस्टिक यू कैन से डिफीट्स दैट वी फेस इन लाइफ, वी कैन रीबिल्ड दैट, इज़न्ट इट?
0: ऑफ कोर्स वी कैन. एंड डेफिनेटली इट्स अ डे टू recall that famous story which we all read in our school days, King Bruce and the Spider, you know, which tells us that we should strive and keep moving.
1: Absolutely. Yes. And as Margaret Mitchell says in that famous novel Gone with the Wind, the last line of Scarlett O'Hara, which she says, after all, tomorrow is another day.
0: Tomorrow is another day, and tomorrow never dies.
1: Absolutely. But here's the difference between a setback and surrender. A setback is something that happens to you. Surrender is when you decide that nothing can change after that. Well, think about it. When a child learns to walk, how many times does that child fall? Does the child decide, well, walking isn't for me, I'll never try again?
0: दोस्तों, हो सकता है कि आपको और प्रैक्टिस, बेहतर तैयारी या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जरूरत हो जो पहले इन हालात से गुजर चुका है. और हो सकता है, बस हो सकता है कि वो बंद दरवाजा आपको कोई दूसरा दरवाजा खोजने का मौका दे रहा है.
2: अरे बेटा, मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं. बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती. यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है दो हफ्ते पसीना बहा ले. अंजन, गेट अप, उठो.
1: That very, very inspiring dialogue from a film, and that voice was of course of actor Pankaj Tripathi. Well, some days motivation comes naturally, on other days

0: वो हमेशा के लिए एक ठप्पा न माने, इसे एक फीडबैक की तरह देखें। और अगर आप माता पिता, टीचर, मैनेजर या दोस्त हैं किसी के, तो ये बात याद रखें, जब कोई आपसे कहे कि वो असफल हो गया है, तो फौरन उसे छोटा महसूस न कराएं। उनकी बातों को सुने, उन्हें सोचने समझने में मदद करें, उन्हें सीखने और फिर से कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: Because people grow best when they know that one mistake will not cost them their dignity.

0: तो दोस्तों आइए ऐसे घर, क्लासरूम और काम की जगहें बनाएं जहां हम गलतियों पर ईमानदारी से बात कर सकें, जहां लोगों को गलती करने पर शर्मिंदा करने के बजाय उन्हें सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
1: And the next time life knocks you down, remember that you don't have to bounce back overnight. You just have to believe that one difficult chapter does not define the whole book.

0: So well, Monish, I think we have definitely motivated our listeners who probably have set new goals. They needed that much needed dose of motivation. Well, coming to our second topic of Dateline India, today is World Thrombosis Day, which is observed annually on 13th of October to raise global awareness about thrombosis, its warning signs, prevention and treatment.
1: दोस्तों, ये दिन थ्रोम्बोसिस के कारणों, रोकथाम और प्रबंधन के बारे में लोगों की समझ को बेहतर बनाने को समर्पित है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर बीमारी जैसी जानलेवा स्थितियों से इसके संबंध पर जोर दिया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: Thrombosis is the formation of a blood clot in a blood vessel. Blood clot formation can occur in any vein or artery throughout the body. Once a blood clot occurs, it can slow or completely block normal blood flow and may even break loose and travel to vital organs like the lungs, brain, or heart. When a blood clot travels through the circulation, it becomes a dangerous embolism. Thrombosis serves as the often preventable underlying cause of major cardiovascular killers like heart attack. The theme for World Thrombosis Day 2026 is From Head to Toe, Take Control, Prevent Thrombosis, Protect Your Health, with a special clinical and public awareness focus on women's health and blood clot. A woman's risk of developing a clot changes from adolescence and reproductive health through pregnancy, postpartum, menopause and beyond. Preventing blood clots involves maintaining a healthy lifestyle through regular physical activity, a balanced diet, adequate hydration and maintaining a healthy weight. Avoiding prolonged sitting or standing, quitting smoking and managing blood pressure and cholesterol levels can further reduce the risk of thrombosis. The significance of World Thrombosis Day lies in its focus on preventing deaths and complications from blood clots. This is Sanyukta Yadav for Parikrama.
1: लीजिए, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या कुछ है उनके पास खास। शारदीय नवरात्र के पहले दिन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुए इस मेले का श्री राम रंगमंच पर आयोजित समारोह में विधिवत उद्घाटन किया गया। कौन सा मेला है वो, ये तो हम आपको बता दें। राजस्थान के कोटा में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाला 133वां राष्ट्रीय दशहरा मेले में लोक आस्था, संस्कृति, व्यापार और मनोरंजन के विविध रंग आपको देखने को मिलेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने मेला ध्वज फहराया।

0: इसके साथ ही रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए और आतिशबाजी के बीच मेले के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की गई। इस अवसर पर मेले की आधिकारिक वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। इससे पहले नवरात्र के पहले दिन आशापुरा माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मेले के धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। 5 नवंबर तक चलने वाले कोटा दशहरा मेले को देखने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचते हैं। मेले में लगाई गई स्टॉलों पर खरीदारी करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। 20 अक्टूबर को दशहरे के पर्व पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है। गौरतलब है कि शिक्षा नगरी कोटा को प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में दशहरे मेले का योगदान है। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
1: And from Jaipur, we head to the northeast. In Manipur, the Mera Charul Hoba is a festival that's observed by the Métis community on the first day of Manipur calendar month of Mera, and the festival highlights the importance of indigenous faith and traditional practices, reminding people of their deep-rooted connection with their ancestors and spiritual heritage. This year, the festival was observed last Sunday in a festive mood. Let's hear more from our correspondent, Nyan Om Kiran.
2: Mera Chauren Hoba Festival was observed on 11th of this month across the state. The main observation was organized by Lining Thau Sanamahi Temple Board Imphal, and the celebration witnessed the participation of followers of the Sanamahi faith, the members of various indigenous communities including the Maitai, Kabui, Chote and Maring communities. As part of the observation, the main procession began at the Lining Thau Sanamahi Temple at Haying Khongbal Upong Yumpham and proceeded towards the historic Kangla with participants carrying traditional religious symbols. At Kangla, sacred water was collected from Nungjang Pukri as part of the traditional observance. Religious ceremonies and prayers were subsequently conducted, seeking divine blessings for the well-being of the people and the restoration of lasting peace in Manipur. The festival is dedicated to Lining Thau Sanamahi and Laimarel Sidabi and represents an important expression of indigenous religious beliefs and ancestral traditions. Mera Chauren Hoba once again serves as a reminder of Manipur's rich cultural identity and the collective hope for peace, unity and prosperity among its people. Ngangom Kiran for Akashvani News, Parikrama, Imphal.
3: और दोस्तों, अब बात खेल के मैदान की। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के विरुद्ध एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतर प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
1: And if you talk about some news from the world of business, well, benchmark domestic equity indices entered over 1.5% higher today. Sensex surged 1,109 points to close at 73,034. Nifty soared 359 points to settle at 22,722.
3: और आइए अब हम याद करें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान विशिष्ट व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: आज स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई की जयंती है। वो आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों के बचाव के लिए याद किए जाते हैं जिन पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।
5: भूला भाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के साथ शुरू किया। वे प्रारंभ में भारतीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने केवल यूरोपीय लोगों वाले साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की पूछताछ में उन्होंने गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इस संघर्ष में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली।

0: देसाई 1930 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी सभा बनाई और 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए मनाया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर को उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर यरवदा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।
1: सितंबर 1941 में देसाई को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया और खराब तबीयत के कारण ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं ले सके। वे कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में थे जिन्हें 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके। उस दौरान देसाई ने स्वतंत्र भारत सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त पसंद के लिए लियाकत अली खान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत असफल रही।
0: 1945 में जब आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को पकड़ा गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 वकीलों की रक्षा समिति बनाई। भूला भाई तीनों अधिकारियों के बचाव में लगी उस समिति का नेतृत्व कर रहे थे।
1: मातृभूमि के लिए प्रेम और अदम्य भावना के लिए भूला भाई देसाई को शत शत नमन।
2: आज पुण्यतिथि है दोस्तों निरूपा रॉय की, हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने बाद में अपने करियर के उत्तरार्ध में माँ के चरित्र को इस तरह से प्रस्तुत किया सिनेमा के रूपेले पर्दे पर कि आज भी लोग उनको भूल नहीं पाए हैं। और 3 बार उन्हें ऐसी भूमिकाओं के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसी कई फिल्में थी जिसमें उन्होंने माँ का किरदार निभाया, जैसे खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार मर्द और गंगा जमुना सरस्वती। सुनते हैं उनका एक ये बड़ा ही यादगार सा संवाद जिसे हमने चुना आपके लिए फिल्म दीवार से।
3: माँ जाएगी।
4: नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
3: मैं जा रही हूँ।
4: नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी।
3: वो आदमी जिसने तेरे बाप के साइन लिए वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरी माँ को गालियाँ देकर निकाला वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरे हाथ पर लिख दिया कि तेरा बाप चोर है वो तेरा कौन था? कोई नहीं। मगर तू तो मेरा अपना बेटा था, मेरा अपना खून। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है?
4: लेकिन माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया।
3: विजय बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। चल रवि, चल।
5: And now we are remembering a versatile playback singer and actor whose distinctive voice and songs across several Indian languages made him one of Hindi cinema's most beloved musical icons. Yes, we are talking about Kishore Kumar.
2: किशोर कुमार को भारतीय संगीत के इतिहास के सबसे महान और सबसे दमदार गायकों में तो गिना ही जाता है और वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय गायकों में से भी एक हैं और अपनी युडलिंग और अलग अलग आवाजों में गाने की क्षमता के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं।
5: एंड आकाशवाणी पेज ट्रिब्यूट टू द लेजेंड।
6: मैं गाना गाऊं? अरे घर, मुझे गाना कहाँ आता है?
7: द अनडाइंग टैलिस्मैन ऑफ इंडियन सिनेमा, द योडलिंग किंग, किशोर कुमार।

0: अमर गायक किशोर कुमार की स्मृति को हमारा नमन। और दोस्तों, आज ही देखिए कैसा इत्तेफाक है, आज उनकी पुण्यतिथि है किशोर कुमार की, और जयंती है उनके बड़े भाई साहब अशोक कुमार की, जो कि एक बड़े ही जाने माने अभिनेता हिंदी सिनेमा के रहे हैं। और स्वाभाविक अभिनय की जो शुरुआत है सायरा, मैं समझता हूँ उनके मोतीलाल और बलराज सहनी साहब के साथ मानी जाती है।
1: एब्सोल्युटली।
2: रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक भड़क भड़क लोहे की सड़क भड़क भड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ।
3: मेरे आ जाने से आप सब परेशान हो गए हैं।
4: नहीं परेशानी कोई बात नहीं, अगर आपको बिल चुकाना था तो ऑफिस में चली आती, आप ऊपर में चले आए, बिस्तर में सो रहा था, आज छुट्टी का दिन है।
3: सुनिए तो सही, मैं ऑफिस में गई थी बिल देने, लेकिन वहाँ भी एक लड़का नाच रहा था।
4: भी अरे देख, ये ऑफिस में बिल देने गई थी और मोजी वहाँ नाच रहा था।
5: हाँ हाँ
4: बदतमीजी, तू बॉक्सिंग ग्लव्स ला, मैं
5: जाने दो भैया, जाने दो,
4: जाने कैसे दो।
3: मुझे एक काम है, मैं मन्नू को ले जाऊँ।
4: देखिए मुझे ये सब पसंद नहीं कि मेरे भाई किसी लड़की के साथ।
5: किसकी तस्वीर है
3: ये? तस्वीर इनके कमरे से मिली।
5: लड़की
4: लड़की की तस्वीर देखो, दिखा मुझे,
5: देखो देखो
4: देखो,
5: दिखा ना
4: लड़की की तस्वीर,
5: लड़की देखो।
4: लेकिन मेरे कमरे में लड़की की तस्वीर कैसे?
3: आपके बिस्तर पर।
4: मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन मेरे बिस्तर पर
3: आपके तकिए
4: के, मैं समझ गया, लेकिन मेरे तकिए के नीचे लड़की की तस्वीर, ये कैसे?
1: And well, Mohnish, I think many of the listeners wouldn't know that Ashok Kumar's real name was actually Kumudlal Ganguly. And as you said, that aaj hi kya hi ittefaq hai ki ek chote bhai ki death anniversary hai aur Ashok Kumar ki birth anniversary. And to tell our listeners that Ashok Kumar was honored with the Dada Saheb Phalke Award in the year 1988, which is the highest national award for cinema artists. And he received the Padma Shri in 1962 and Padma Bhushan in 1999. For his contributions to Indian cinema.
0: जी हाँ, हम उन्हें याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी जब उन्हें सुनेंगे हमारे माध्यम से, तो जो हमारी भावनाएं हैं आपकी भावनाओं के साथ मिलकर उन तक पहुंचेंगी। और दोस्तों, अब ये परिक्रमा जो कार्यक्रम है समाप्त हो रहा है, दीजिए हमें आज्ञा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए

0: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोट मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस्की निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை நேரம் 6:05.
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
4: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது விஸ்லே.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, किसी भी देश में बुनियादी ढांचे का विकास केवल सड़कें, रेलवे लाइनें, बंदरगाह या हवाई अड्डे बनाने तक सीमित नहीं है। ये भी जरूरी है कि ये सभी सुविधाएं एक दूसरे से जुड़ी हों और इनके निर्माण की योजना आपसी तालमेल के साथ बनाई जाए। मिसाल के तौर पर किसी औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क तो बन जाए, लेकिन रेलवे स्टेशन या बंदरगाह की उचित व्यवस्था ना हो तो उस सड़क का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी तरह अलग अलग विभागों की योजनाओं में तालमेल की कमी से समय और संसाधनों का इस्तेमाल भी प्रभावित हो सकता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी अलग अलग मंत्रालयों, राज्यों और परिवहन नेटवर्क

0: युवकों को एक साझा मंच पर लाकर बेहतर नियोजन और समन्वय को बढ़ावा देना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पीएम गतिशक्ति कैसे काम करती है और किस तरह अलग अलग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखने में मदद करती है। साथ ही तीन परियोजनाओं के उदाहरणों से समझेंगे कि इस तरह की योजना का इस्तेमाल जमीन पर किस प्रकार किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना का विचार समझने के बाद अब जानते हैं कि पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत अलग अलग विभागों की जानकारी को एक मंच पर कैसे लाया जाता है और इस व्यवस्था में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
1: पीएम गतिशक्ति की एक प्रमुख विशेषता है भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से किसी स्थान से जुड़ी अलग अलग जानकारियों को नक्शे पर देखा और समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी नए मार्ग की योजना बनाई जा रही है तो यह देखा जा सकता है कि किन औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ेगा, आसपास परिवहन की कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं और किन स्थानों पर संपर्क बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे योजना बनाते समय अलग अलग जानकारियों को एक साथ ध्यान में रखना आसान होता है। 12 अक्टूबर 2026 तक पीएम गतिशक्ति के साझा मंच पर 23,493 से अधिक डेटा लेयर्स उपलब्ध थी। इनसे बुनियादी ढांचे, भौगोलिक विशेषताएं और अन्य जरूरी जानकारियों को एक साथ देखने में मदद मिलती है। इसके सार्वजनिक मंच पर 230 अनुमोदित डेटा सेट तक भी पहुंच उपलब्ध है। इस व्यवस्था में 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और माल की आवाजाही से जुड़ा बुनियादी ढांचा शामिल है। इन क्षेत्रों को एक साथ देखने का उद्देश्य ये है कि किसी परियोजना की योजना बनाते समय उसके दूसरे परिवहन साधनों और आर्थिक गतिविधियों से संबंध को भी ध्यान में रखा जा सके। पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत पहले से चल रही कई बुनियादी ढांचा योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, ड्राई पोर्ट और लैंड पोर्ट तथा उड़ान जैसी पहले शामिल हैं। इन योजनाओं का संबंध सड़क संपर्क, समुद्री और जलमार्ग परिवहन, माल की आवाजाही और हवाई संपर्क से है। पीएम गतिशक्ति का प्रयास इनसे जुड़ी जानकारियों को व्यापक नियोजन प्रक्रिया में उपलब्ध कराना है। इस काम के लिए अलग अलग विभागों के बीच समन्वय भी जरूरी है। वर्तमान में पीएम गतिशक्ति के दायरे में 58 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग तथा 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। योजना को आगे बढ़ाने के लिए 3 स्तर वाली व्यवस्था बनाई गई है। पहला है अधिकार प्राप्त सचिवों का समूह, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। ये समूह योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और राष्ट्रीय मास्टर प्लान में बदलावों पर विचार करता है। दूसरा है नेटवर्क नियोजन समूह, इसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। ये परियोजनाओं के प्रस्तावों की जांच करता है ताकि उनके नियोजन में आपसी तालमेल और उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा है तकनीकी सहायता इकाई, इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो परियोजनाओं के मूल्यांकन में सहयोग करते हैं। 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क नियोजन समूह लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन कर चुका था। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी और 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में थी। पीएम गतिशक्ति में डिजिटल जानकारी के साथ संस्थागत समन्वय को महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की योजना बनाते समय विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बेहतर करना और बुनियादी ढांचे के व्यापक नेटवर्क को ध्यान में रखना है।
0: श्रोताओं, साझा डिजिटल मंच और विभागों के बीच समन्वय की उपयोगिता को कुछ परियोजनाओं के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि सड़क संपर्क, माल की आवाजाही और बिजली परेशन से जुड़ी परियोजनाओं में पीएम गतिशक्ति का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है।
1: पीएम गतिशक्ति का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और मौजूदा संपर्क सुविधाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जा रहा है। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, असम का जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और लद्दाख हरियाणा हरित ऊर्जा गलियारा इसके 3 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का। करीब 699 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र और कर्नाटक के औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए विकसित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में वाहन निर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, दवाइयों और रक्षा उत्पाद से जुड़े केंद्र शामिल हैं। इस परियोजना की योजना में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग, 25 राज्य राजमार्गों और 6 रेलवे स्टेशनों से संपर्क को शामिल किया गया। यानी ये केवल 2 शहरों के बीच सड़क बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों और दूसरे परिवहन नेटवर्क से जुड़ाव को भी ध्यान में रखती है। पीएम गतिशक्ति के मंच का इस्तेमाल करते हुए इस

0: क्रॉसवे के मार्ग में बदलाव किए गए, जिससे वन भूमि के साथ उसका ओवरलैप 19% तक कम किया गया। परियोजना के 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके पूरा होने पर यात्रा के समय में 7 से 8 घंटे की कमी आने का अनुमान है। साथ ही हर वर्ष लगभग 16 करोड़ लीटर ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन में करीब 39 करोड़ किलोग्राम की कमी आने की उम्मीद जताई गई है। दूसरा उदाहरण है असम में जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित इस पार्क को पूर्वोत्तर क्षेत्र में माल की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसकी योजना में सड़क, रेल और अंतर्देशीय जलमार्गों को एक साथ जोड़ने का ध्यान दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन के अलग अलग साधनों के बीच बेहतर संपर्क उपलब्ध कराना है। इसके नियोजन और माल की संभावित मांग के आकलन में पीएम गतिशक्ति का इस्तेमाल किया गया है। इसी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नदी पर डुबरी और फूलबाड़ी के बीच 4 लेन का पुल भी बनाया जा रहा है। इसके बनने पर दोनों स्थानों के बीच यात्रा की दूरी 205 किलोमीटर से घटकर 20 किलोमीटर तक रह जाने और यात्रा का समय लगभग 7 घंटे से घटकर 30 मिनट होने की उम्मीद है। तीसरा उदाहरण है लद्दाख हरियाणा हरित ऊर्जा गलियारे का। इस परियोजना के अंतर्गत लद्दाख के पांग से हरियाणा के कैथल तक 480 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण लाइन बनाई जानी है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरेगी और कैथल में राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जुड़ेगी। यहाँ पारेषण का अर्थ है बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। इस परियोजना का उद्देश्य 5 गीगावाट की पारेषण प्रणाली के माध्यम से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली ग्रिड से जोड़ने में मदद करना। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन तीनों उदाहरण में जरूरतें अलग अलग हैं। कहीं औद्योगिक क्षेत्र को सड़कों से जोड़ना है, कहीं माल की आवाजाही के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच संपर्क बेहतर बनाना है और कहीं नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली ग्रिड से जोड़ने की व्यवस्था करनी है। लेकिन तीनों में एक बात समान है, परियोजनाओं की योजना बनाते समय उसके व्यापक नेटवर्क और दूसरी सुविधाओं के साथ संबंध को ध्यान में रखना जरूरी है। पीएम गतिशक्ति इसी तरह की एकीकृत योजना बनाने में सहायता करता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे की योजना को अधिक समन्वित बनाना है। साझा डिजिटल मंच पर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल से संपर्क की कमियों की पहचान करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और परियोजनाओं की योजना बनाने में सहायता मिल सकती है। इसका महत्व माल की आवाजाही, औद्योगिक क्षेत्रों के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी सुविधाओं को एक साथ देखने में है। हालांकि बेहतर योजना अपने आप में किसी परियोजना के पूरा होने की गारंटी नहीं है। वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि परियोजनाओं को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और उनसे लोगों तथा उद्योगों को कितना लाभ मिलता है। इसलिए पीएम गतिशक्ति को केवल बुनियादी ढांचे का डिजिटल नक्शा नहीं, बल्कि अलग अलग नेटवर्कों को एक साथ ध्यान में रखकर योजना बनाने की व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह।

0: राष्ट्रिय क्रिकेट समित्या सितंबर मासस्य मासोत्कृष्ट क्रीडक पुरस्काराय शेफाली वर्मा शुभमन गिल इत्येतौ चितौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् केंद्र सर्वकारेण स्वकीये शासन दृष्टिकोणे कार्य संस्कृतौ च सशक्तिकरणाय सामर्थ्यम् इति सिद्धान्तः अंगीकृतः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फॉर्म इति आर्थिक मंचं संबोधयता प्रधानमंत्रिणा प्रतिपादितं यत् जागतिक अनिश्चिततानां मध्येपि भारतस्य आर्थिक प्रगतिः अतीव दृढ़ावस्थायां अग्रेसरा वर्तते। सः अवोचत् यत् भारतस्य विकासः सामूहिक प्रगतौ सहभाग्यवसरेषु च आधारितः अस्ति। प्रधानमंत्री अग्रे अवदत् यत् सर्वकारस्य निरंतर प्रयासः अस्ति यत् भारतस्य सामर्थ्यं विश्वस्य अन्यदेशेभ्यः अपि अवसराणां नूतनद्वाराणि उद्घाटयेत्। सः अवोचत् यत् सामर्थ्यं केवलं अग्रे गमनस्य क्षमता नास्ति, अपि तु अन्येषां सशक्तिकरणस्य क्षमता वर्तते। श्रीमोदिना उक्तं यत् वर्तमाने युगे अङ्कीयशक्तिः अस्य रूपान्तरणस्य प्रमुखचालकरूपेण उदिता, या अस्य दृष्टिकोणस्य विस्तारे महतीं भूमिकां निर्वहति, यथ च भारते विपुलान् अवसरान् सृजति।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्रिणा प्रतिपादितं यत् यदा कदापि विश्वस्मै स्थिरस्तम्भस्य आवश्यकता भवति तदा भारतं स्वदायित्वम् अनुभूय साहाय्यहस्तं प्रसारयति। श्रीमोदिना सूचितं यत् अद्य भारते 2,000+ वैश्विक क्षमता केन्द्राणि सन्ति, यानि सम्पूर्ण विश्वस्य वाणिज्यिक संस्थाभ्यः सेवाः प्रयच्छन्ति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, यत्र शतसंख्याधिकाः भाषाः, प्रायः 80,000 पञ्जीकृतानि समाचारपत्राणि प्रकाशनानि च, 1,000+ च उपग्रह दूरदर्शनवाहिन्यः सन्ति। श्रीमोदिना विशेषतया प्रतिपादितं यत् विगते दशके भारतेन 25 कोटि जनाः निर्धनरेखातः बहिः निष्कासिताः।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: नवदिल्ल्यां बंगालोपत्यका बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगोपक्रमस्य प्रथम गृहमंत्री सम्मेलनं भारतस्य आतिथ्ये सम्पद्यते। इदं ऐतिहासिकं सम्मेलनं आतंकवादस्य, पारदेशीय संगठित अपराधानां, मादक द्रव्य तस्कर जालस्य, मतान्धतायाः, मानव दुर्व्यापारस्य, अवैध वित्तीय प्रवाहाणां, अथ च साइबर आह्वानानां सम्मुखीकरणाय सामूहिक संकल्पं दृढयति। अत्रावसरे भाषमाणः गृहमंत्री अमित शाहः अवोचत् यत् बीमस्टेक संगठनं क्षेत्रीय एकीकरणाय, आर्थिक सहयोगाय, अथ च सामूहिक सुरक्षायै प्रमुखमञ्चत्वेन उदितमस्ति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदात्त दर्शनेन प्रेरितं सत् सदैव विश्वशान्तये मानवकल्याणाय च प्रतिबद्धं वर्तते। आतंकवादं प्रति भारतस्य असहिष्णुतायाः नीतिं प्रतिपादयन् गृहमंत्री सामूहिक प्रतिबद्धतायै आह्वानम् अकरोत्। अस्मिन् सम्पूर्णक्षेत्रे कस्मै अपि आतंकवादीजालाय आश्रयदानस्य, नियुक्तिप्रक्रियायाः, प्रशिक्षणस्य, वित्तपोषणस्य अथवा प्रतिवेशिदेशानां विरुद्धं घातुककार्याणि संचालयितुं किमपि स्थाननं न दीयेत।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और हेडलाइंस के साथ में है राजेश लेक।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1.5%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1,100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,700।

0: 100. Prime Minister Narendra Modi condemns weaponization of global interconnectedness, positions India as a dependable ally. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year. And UPI merchant discount rate on select person to merchant transactions to be implemented after Diwali.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक का उछाल, सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा की बढ़त, निफ्टी 22,700 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परस्पर संबद्धता के दुरुपयोग की निंदा की, भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान पर UPI MDR दीपावली के बाद लागू

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 1% से ज्यादा के लाभ में रहा, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली तेजी आई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक equity indices ended over 1.5% higher today. The Sensex surged 1,109 points to close at 73,034. The Nifty soared 359 points to settle at 22,722. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed over 1%, while the Small-Cap 100 Index eked out a marginal gain of 0.1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों में आज बढ़त देखी गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HCL टेक में 8.3% का उछाल आया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 6.6% ऊपर आ गया और टेक महिंद्रा में 4.9% की वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में 0.9% की गिरावट आई और मारुति तथा एटर्नल में 0.6% की सुस्ती देखी गई।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT surged over 5%, IT climbed 4.9%, and realty advanced 2.5%. In contrast, hospitals and healthcare dropped 0.2% each. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,415 companies advanced, 1,957 declined and 219 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ। डॉक्टर एस पी शर्मा, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने बाजार में उछाल देखा, तो इसको हम किन परिणामों की वजह मान सकते हैं? खासतौर पे इसे विदेशी निवेशकों का कोई एक नया टर्न माने, या फिर वैश्विक परिस्थितियों पर का जो असर है वो हम पर ज्यादा दिख रहा है, या कुछ अन्य कारण है इसके?
2: देखिए, इसके कई कारण हैं जो सभी कारणों ने मिलकर मार्केट को एक अच्छा सर्ज दिया, एक अच्छा उछाल दिया। सबसे पहले तो जो एक वैल्यू बाइंग होती है, जो मार्केट में हमने पिछले काफ़ी दिनों में डिसेलरेशन देखी कि मार्केट ऐसे स्तर पे आ गए जहाँ पे एक वैल्यू स्टॉक्स बनते हैं, जो हम आने वाले टाइम में जिनमें हम एक मुनाफा देख सकते हैं। तो उस लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर है वो आकर्षित होता है कि हम मार्केट में एंटर करें। और दूसरा, जो रोबस्ट अर्निंग्स रही आईटी सेक्टर की, आईटी कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी एक मेजर सपोर्ट मिली है। और तीसरा, कुछ ऐसे कारण है कि जो कैपिटल गेन से कुछ रिलीफ हो सकता है मिले इन्वेस्टर को, एक बहुत वो भी एक कारण है। और चौथे पे, जो रुपये के एप्रिशिएट

0: हुआ, रुपी में एक एकदम से रीबाउंड करना 50 बेसिस पॉइंट एक बहुत बड़ी रिलीफ है रुपी के लिए, वो काफ़ी दिनों से डिसलिरेशन हम देख रहे थे। तो कुल मिला के एक सेंटीमेंट जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, तो उससे चौतरफा जो एक रिकवरी के मोड में मार्केट आई और मार्केट ने सुबह मार्केट खुलते ही काफ़ी ज़बरदस्त रिबाउंड दिखाया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट में एक ऐसी जो एक नेगेटिव माहौल था। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि IMF ने भी भारत की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी सुदृढ़ता जताई है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जताया है, इंक्रीज़ किया है ग्रोथ को, तो ये भी साथ में एक फैक्टर जो है सपोर्टिव फैक्टर रहा है।
1: बड़े दिनों बाद हमने ये देखा कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक ही ट्रैक में हमें चलते हुए दिखाई दिए। हालांकि बीते दिनों में ये हो रहा था कि जिस ट्रैक पर लार्ज कैप जा रहे थे उस पर शायद स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं पहुंच पा रहे थे, आज सभी एक ही ट्रैक पर चलते दिखाई दिए। तो ये घरेलू निवेशकों का इंटरेस्ट हमें दिखा रहा है ज़्यादा, या इस पर भी वही सारे कारण लागू होते हैं जो आपने बताए?
0: देखिए, इसके ऊपर वही कारण है जो हमने डिस्कस किए हैं कि जब चौतरफा रैली आती है तो सभी में, चाहे वो लार्ज कैप्स हों या फिर स्मॉल कैप्स हों, सभी एक ही दिशा में फिर हमें दौड़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एक तो IMF ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, भले ही एक कल के जो नंबर्स थे, कल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो फेवरेबल नहीं था और मार्केट्स में कुछ काफ़ी हलचल देखी गई, मतलब करेक्शन थी, तो लेकिन ना उतना ही आज रीबाउंड बहुत स्ट्रांग था जो ये फैक्टर सपोर्टिव फैक्टर बने। मतलब कुल मिला के जो अगर हम देखें इसको कंपोजिट में, तो पॉजिटिव्स ज़्यादा है और नेगेटिव्स थोड़े रह गए पीछे।
2: यू मेंशन अबाउट यस्टरडेज डिक्लाइन primarily because of the global risk of sentiment. Have those pressures eased or paused for some time? What should we be expecting? Yesterday was pretty low. Today we are on a high terrain. So what should now in the coming days we should expect?
0: I don't think those pressures are subsides or eased, but today's sentiment is higher than those negative sentiments. So the today's developments are dominating those a few negative headwinds which are happening at the global level. But the rise of rupee and the robust IT earnings and IMF confidence on India's economy and some expectations for the tax relief, all these factors were higher or supportive or largely supportive as compared with the some laggards of like the inflation and the
2: global uncertainty. So Dr. Sharma, does this indicate that the market believes that inflation and interest rate concerns are becoming less severe?
0: Because these are temporary. Actually, these are the repercussions or the results of the West Asia crisis. That's why crude oil prices are going up, because the global growth is decelerating, demand is not that much high at the global level, but still crude oil prices in the higher side because of the West Asia or the supply side concerns. So that's why the interest rate are going up, because of the crude oil prices and the inflation trajectory becoming problematic. So these factors are temporary. As and when there is some peace at the global level between Iran and US, then the crude prices will fall drastically and the inflation will also come in the realistic zone, and the interest rate also will become rational. So there will not be any increase if the prices are coming down, the inflation becomes stable
2: about
0: once
2: the,
0: again.
2: You mentioned about the IT led the market today with nearly a 5% gain. What is driving the renewed interest in technology stocks?
0: Because India's competitive advantage in IT sector is very strong, still existing at the global level, because we are very strong or competitive in the with the global players, and that's why our companies are gaining more. Though there are headwinds, but our IT sector is very resilient sector at the global level and showing the good results and numbers.
2: So today FMCG and auto also participated in the rally. How important will festival season, the festive season demand be for these sectors in the coming weeks?
0: Yes, IT, as IT is a major driver, IT stocks when are going up and

0: And that creates an overall growth trajectory of the economy and demand also happening, because the IT earnings also support many other sectors like the real estate sector and the FMCG, because demand is increased in the economy because of the earnings of the IT players or the IT employees also. So that's why I believe this rally becomes more strong when the IT gung-ho happens in the economy.
1: SP, थोड़ा सा अगर तुलना करें पिछले महीने की और इस महीने की, तो हमने देखा पिछले महीने गिरावट का एक बड़ा रुख नजर आया था, लेकिन अक्टूबर में अभी तक मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है. हालांकि वैश्विक परिस्थितियां तमाम हमें अगर ओवरऑल देखते हैं तो उसी तरह से नजर आ रही हैं. मैं आपसे गहराई से पूछना चाहता हूँ, इसमें DIS की क्या भूमिका है?
0: देखिए, इसमें DIS की बहुत स्ट्रांग भूमिका है. जैसे

0: देखिए, इसमें डीआईएस की बहुत स्ट्रांग भूमिका है, जैसे बिकॉज एफआईआई तो आपने देखा कि बहुत ही वॉलेटाइल
1: जी बहुत निकासी हो रही है,
0: आज इधर हैं तो कल कहीं और दिखेंगे, तो लेकिन डीआईएस ने मार्केट को जो सपोर्ट किया, डीआईएस का जो कॉन्फिडेंस है, डीआईएस का जो इकोनॉमी के ऊपर एक जो रवैया भरोसा जिसको हम कहते हैं, उसी से रिटेलर का भरोसा भी बनता है, तो ये दोनों ऐसी सेगमेंट्स है। रिटेलर्स का तो ट्रांजैक्शन काफ़ी हाई है
1: जी,
0: और डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई है, तो दोनों ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है मार्केट को देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पीछे हमने देखा कुछ महीने पहले जो डिसेलरेशन का एक मोड था, जो अब फिर वो डिसेलरेशन डीप हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर उसके बाद करेक्शन आई, फिर रिकवरी हुई, तो ऐसा दौर कई बार चला। तो अभी का ये जो दौर है, अभी मार्केट एक ऐसे स्तर पे आ गई है जहाँ पे मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, मार्केट की में एक वैल्यू बाइंग आती है, जो लोग सोचते हैं कि मार्केट में हमें 2-3 साल का लोअर स्तर मिल रहा है तो हमें इसमें एंटर कर जाना चाहिए, जबकि कारण कुछ और हैं। कारण हमारी ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ खामी है या फिर हमारी कंपनीज के नतीजे गलत हैं या फिर वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं, कारण है इसके जो ग्लोबल सेंटीमेंट है, जो एक हेडविंड्स हैं, जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है पिछले काफ़ी महीनों से, जो एक एस्केलेशन हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो ट्रांसमिट हो रही है इन्फ्लेशन में, पहले WPI में, CPI में, तो कारण इसके ग्लोबल है, कारण इसके हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल नहीं है, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देखिए, आप IIP के नंबर्स देखिए, आप कोर इंफ्रा के नंबर कुछ भी आप देखिए, तो एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव।
1: अभी जिस तरह से IMF ने आंकड़े मतलब जो ये बात कही कि GDP हमारी 7% की बढ़ोतरी की बात कही, ये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगा?
0: जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी लार्ज इकोनॉमी नहीं है जो 7% पे ग्रो कर रही हो। आप देखिए चाइना का ग्रोथ जो है IMF ने 4.5% बताया है, मच बिलो एज कम्पेयर्ड विद इंडिया। इंडिया 7% है और मैं समझता हूँ कि 7 से ऊपर ही रहेगा। अगर आप पिछले 5 वर्षों का डेटा देखेंगे 21-22 से लेके 25-26 तक का, तो एवरेज ग्रोथ जो इंडिया का बनता है वो 7.5% से ऊपर है, जो उन्हीं कंट्री से, उन इकोनॉमी से, चाइना से, USA से, कहीं कहीं मतलब डबल ट्रिपल है। आप ग्लोबल ग्रोथ को देखिए 3.1%, उससे डबल रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं
1: जी,
0: तो भरोसा बनना तो लाजमी है। जो FIIs का भरोसा बनना या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी भारत की इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनका तो कॉन्फिडेंस बनना स्वाभाविक है। जब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो IMF इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट 7%, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द पीपल।
2: Moving on, Prime Minister Narendra Modi today said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Modi said that India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said India's GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India's foreign exchange reserves exceed $700 billion and the banking system is in its strongest position in many decades.
3: साथियों, 21st century का ये decade अभूतपूर्व global challenges लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था, जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं।
2: द प्राइम मिनिस्टर आल्सो पोजीशन्ड इंडिया एज अ डिपेंडेबल एलाय, ऑफरिंग अ रेडिकली डिफरेंट कोऑपरेटिव अप्रोच टू ग्लोबल रिलेशंस। Mr. Modi said that India does not grow at anyone's cost. He said that India grows with the world and for the world. Apart from that, Dr. Sharma, what the Prime Minister mentioned was also India's reforms. They continue to move India ahead at a high speed. What do you have to say about that? And second thing is about India being the home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world.
0: जी बिल्कुल लेख साहब, दिस इज आई बिलीव अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेंशन दैट इंडिया

0: India's support system is very strong. Reforms are progressing and supporting the economic growth trajectory. So I would say there are four major pillars of the Indian economy right now which are supporting the growth. Firstly, the stable policy environment, which we call the reforms express. Reforms are happening each day. One reforms is implemented, then the second also comes to support the first. So this chain is continue since the last many years, particularly from the pandemic years when we supported the economy with many reforms, reforms for the farmers, reforms for the MSMEs, reforms for the NBFCs, reforms for the citizens, laborers. So these reforms are progressing and providing a great support to the economy. So this is the first pillar. And second is the trajectory of the middle class. Middle class is growing significantly as 25 crore people are pulled from poverty to the middle class, lower middle class is now entering.
1: So the consumption story is quite strong.
0: Yes, consumption story is becoming more and more robust and strong to support this growth trajectory, which is happening 7.8% or more than 7% during the last many years. And third is the export competitiveness. We are becoming more and more strong at the global level. Our competitiveness is increasing. We are making new numbers in our exports every year. Last year we posted $863 billion. So now current year we have a target of $1 trillion. So this is again a strong pillar of the economic growth trajectory. And fourth is the ease of doing business, which is happening for the businesses to expand their production possibility frontiers. Reforms are happening, compliances are becoming simple, GST is now becoming simple. So these four pillars are becoming a strong support for the overall economic growth trajectory of the country.
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ी हुई घरेलू मांग और बेहतर सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक बढ़ोतरी को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण इन अनुमानों में सुधार किया गया है. इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया गया था. आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अनुमान की सराहना की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा तथा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी. एसपी, कई सारी बातें इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ी है. एक आम व्यक्ति के नजरिए से अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो आईएमएफ को ऐसा क्या नजर आया भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसकी वजह से आईएमएफ ने यह स्टेटमेंट दिया कि भारत की घरेलू उत्पादन वृद्धि दर इतनी होगी?
0: देखिए, आईएमएफ के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले चार पिलर्स बताए हैं, तो कंजम्पशन एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए. और सेकेंड जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स ने एक बहुत ही बड़ी हैंड होल्डिंग हमारी ग्रोथ को,
2: कारोबार करने में आसानी
0: होना, तभी तो हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे एमएसएमईज ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो हमारे सेक्टोरल डेवलपमेंट्स है, लाइक द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या फिर और बहुत सारे जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो मैनुफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है. लगभग कोई 10% के आसपास का अभी हमने जो फर्स्ट क्वार्टर में देखा, तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, 9% के भी ऊपर है, और पिछले साल भी 9.9% था. तो कुल मिला के जो ये फैक्टर्स हैं, ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. और ख़ास करके जो चैलेंजेस, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के लिए चैलेंज, उनके लिए फिस्कल चैलेंज एक बहुत बड़ी एक समस्या है, और एक आने वाले टाइम में उनको एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है, इन्फ्लेशन उनके कई, जैसे यूएस का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज़ स्टिकी एट द हायर लेवल, लेकिन ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है और डेट इंक्रीज हो रहा है. तो ऐसी, और चाइना में ग्रोथ जो है 4.5% पे आ गई है. तो कुल मिला के जो भारत की लीडरशिप है, जो भारत का ग्रोथ रेट है, वो असल में ही सराहनीय है कि हम इतने हेडविंड्स के बावजूद भी हम इस लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं.
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दीपावली के बाद लागू किया जाएगा. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर बताया है कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है.

0: एमडीआर के संबंध में अगली सूचना समय आने पर अलग से दी जाएगी। और इस बीच सभी उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ निशुल्क यूपीआई लेन देन करते रहेंगे। एमडीआर शुल्क अगले आदेश के बाद केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक और व्यापारी के बीच किसी भी लेन देन पर लागू होगा। आंकड़ों के अनुसार लगभग 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेन देन इससे अप्रभावित रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को भी पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। एसपी, इस तरह की खबर आना हमारे पास कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट में ये दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। हालांकि पहले से ही क्लियर है कि जो व्यक्ति से व्यापारी के बीच में होना 2,000 रुपए से अधिक का लेन देन उस पर ही होगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ क्योंकि त्योहारों के सीजन में जो डिमांड है काफी हाई रहती है, तो इसमें क्योंकि एक नई प्रणाली सामने आ रही है तो ये डिसीजन अच्छा है कि जो कोई नई चीज़ है उसको हम एक नॉर्मल जब सिनेरियो होगा उसमें इम्प्लीमेंट करें तो उसको समझने में लोगों को आसानी रहेगी। अब क्योंकि जो फेस्टिव डिमांड में सबसे ज़्यादा यही 1-3-4 महीने होते हैं जहाँ पे जो शुरू होती है रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक बहुत ही एक के बाद एक त्यौहार आते हैं, तो क्योंकि ये एक नई प्रणाली है तो इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है जिसमें कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा।
0: एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.5% नीचे आ गया। जापान का निक्के 225 1.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.3% के लाभ में था, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.6% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ऐसे में कुछ देर पहले आईटी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन एशियाई बाजार जो कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वहां इस तरह का माहौल हमें देखने को नहीं मिला। जहां पर पॉजिटिव रुख देखते हैं हम, यहां नेगेटिव रुख देखने को मिला।
1: देखिए, उसमें मैंने जैसे शुरू में बताया था कि काफ़ी फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मार्केट्स ने रिबाउंड किया है आईटी स्टॉक के रोबस्टनेस के ऊपर, और सेकंड जो फैक्टर जो था कि रुपी हमारा एप्रिशिएट हुआ 50 पैसे के साथ, और तीसरा जो था कैपिटल गेंस के ऊपर एक आशा जो बनी हुई है कि उसमें शायद हमें कुछ राहत मिलेगी, और ये सभी फैक्टर्स ने मिलके ही हमें सपोर्ट किया है हमारे मार्केट को, तो उसी वजह से। और हमारे फिर अर्निंग्स भी काफ़ी स्ट्रांग है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
2: US stock markets ended on a mixed note yesterday. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average rose 0.4%, while the S&P 500 remained largely unchanged. Meanwhile, the Nasdaq Composite fell 0.4% as AI-related stocks faced pressure. For further guidance, market participants will focus on inflation data and quarterly earnings report, which is due this week. Dr. Sharma, U.S. tariff concerns and global growth worries have largely contributed to risk of sentiments. How deep could the impact be on the world trade and emerging markets of these?
1: I think the growth will remain intact because there will be some shift in the supply chains. Like us, last year we posted a good growth number in our exports despite the headwinds of the tariffs. We grew, our exports with US also grew, though by 0.1% or 0.2%, and overall growth trajectory also increased. So there is a shift in the supply chains, but the resilient economies will remain resilient and they will do business like the normal days.
2: Indian Railways has recorded a continued growth in freight and passenger segments during the first 6 months of the financial year 2026-27. The Railways Ministry informed that Indian Railways registered 6.14% growth in freight loading, with 135 million tons loaded in September as compared to over 127 million tons during the same month last year. It said that several major commodity segments also recorded strong growth during the month. The ministry said that the food grain loading grew by 25%, clinker by 20%, domestic container by 10%, coal by 9%, balance other goods by 8.2%, mineral oil by 6%, finished steel by 5.5% and iron ore by 5.2%. Dr. Sharma, how significant is this continued growth in freight that I just read about, and how does it indicate about the growing consumption pattern?

0: Yes, Mr. Lake, this is very important aspect as freight increases with a good number. That indicates the consumption trajectory is very strong, and our business segment or the exports are also very strong. So this is a very positive indicator for the overall consumption trajectory and our logistics and our competitiveness in the global market. So I believe the coming days or the coming months will be again very robust for the Indian economy and supporting the economy and supporting the growth trajectory at the larger level.
1: Okay. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.8% lower at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2% lower at $91.84 per barrel at the time of writing this report. Dr. Sharma, is this decline in oil good enough for us in India?
0: I think crude prices are very volatile. We can't trust on this small decline. When there is some talk, positive talk between US and Iran, and prices are decelerating significantly, falling drastically at the normal levels, then we can say that yes, crude prices are now benefiting the growth or the economy.
1: So which domestic themes, Dr. Sharma, do you think will define the next phase of Indian market? Manufacturing, capex, financialization, digital economy, or consumption?
0: I think, as I mentioned, consumption is a strong support for the economy. That is at the forefront of the overall growth trajectory. If the consumption is not there, then the economy can't grow in a significant way. So this is the major factor. And second, to speed the economic trajectory, the digitalization is very important. That is, again, India is a leader in the digital economy at the global level. And thirdly, the earnings of the businesses are also very important. Yeah.
2: Dr. Sharma, is karyakram mein shamil hone ke liye humse mahatvapurna charcha karne ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
0: Ji, shukriya. Thank you.
1: Thank you for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices gain over 1.5%. Sensex surges over 1,100 points. Nifty settles above 22,700. Prime Minister condemns weaponization of global interconnectedness, positions India as a dependable ally. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year, and UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
5: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
4: सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी

0: अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well.
2: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
1: Meanwhile, speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government is open to hearing suggestions on the removal of long-term capital gains tax during consultations for the upcoming union budget. She added that the government will continue to follow a disciplined fiscal approach while protecting spending on key areas such as welfare, education and healthcare.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा कि भारत और विदेशों के निवेशक पूंजीगत लाभ पर कर और प्रतिभूति लेन देन कर सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर लगने वाले करों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खर्च को सुरक्षित रखते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगी। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। सूचना

और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हॉवलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और रिपीट कृपया इसको दोबारा सुन लें भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हरा कर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को चीनी ताइपे के चाउ तियन चेन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Both in India and overseas, had been discussing the taxation of capital gains and different asset classes, including the securities transaction tax. She added that the government will continue to follow a disciplined fiscal approach while protecting spending on key areas such as welfare, education, and healthcare. UPI merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that, keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post-Diwali. Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs Dr. L. Murugan has resigned from both his ministry and membership of Rajya Sabha. In a letter to Prime Minister Narendra Modi, Dr. Murugan said, he wishes to return to the grassroots and stand with party workers and dedicate full time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. India Today reiterated that Ladakh is an integral and inalienable part of India, and no amount of denial by the Chinese side can change this established fact. In response to media queries regarding recent comments made by the Chinese side on Ladakh, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the press release by Home Affairs Ministry is self-explanatory. The announcement mentions that 28 places located in the Union Territory of Ladakh have been identified with standard place and feature names on the official map of Survey of India. Indian nationals in Saudi Arabia have been advised to remain calm and vigilant and stay indoors in case of an aerial attack, the Indian embassy in Riyadh said today as it opened a 24/7 control room to assist the community. The embassy also strongly advised Indian nationals to refrain from circulating or reposting any videos or news related to the ongoing events. Two Maldivian pilots employed by Fly Dubai have been arrested by UAE police in connection with an attempt by an Omani co-pilot to hijack and crash a Dubai Tel Aviv flight in which Indian captain Smith Machar was injured while foiling the suspected plot. Indian opener Shefali Verma was named the ICC Women's Player of the Month for September 2026. And with that, we end this news bulletin.
1: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசை. நேரம் 8:10. இனி கேட்கலாம், மக்கள் பணி தொடங்கி நாட்டு பணி வரை டெல்லி செய்தி பிரிவு வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி.
2: ஏ ஆகாஷ்வாணி ஹே விசேஷ் ஸ்ரிங்கலா ஜன் சேவா சே தேச சேவா கே 27வே சன்ஸ்கரண் மே பிரஸ்துத் ஹே பரிச்சர்ச்சா, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति. इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
3: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है. जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के. 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं. और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है. और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है. तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे. तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत.
4: धन्यवाद.
5: धन्यवाद.
3: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर. सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
5: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो

0: प्राइवेट पार्टनरशिप है वो ही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी।
1: जी
0: और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए। हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है।
1: जी
2: एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो। ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं। अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा, मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA, मिलियन टन पर एनम था, और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है। और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
0: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा हो।

0: क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है, तो जो पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में, तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है, और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है,
1: जी
0: वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में।
1: जी
0: एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है, उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
0: 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार।
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है
1: जी
2: हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा, तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पे ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबर जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इन सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
0: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से जब ये दुनिया में जब इनका फूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज,
1: जी
0: और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था, और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी, और वो पूरा का पूरा जो

0: तो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे एक पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे, और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे, सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है, आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है, और
1: जी
0: हमारे जहाज कंटिन्यूअसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं, वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं, और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं
1: जी
0: इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं? ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का।
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है, बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो, और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है, तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में, और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूव।

0: डेवलपमेंट इनलैंड वाटरवेज में. सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
1: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका. और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं. आज जो इनलैंड वाटरवेज 1 की बात हो रही है जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके. क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है. खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा. भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे. तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए. और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमोघाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास.
0: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है. कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ. कैसे देखते हैं आप इसको, ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है. ट्रांसशिपमेंट का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है. तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा. तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है. अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
0: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है. एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जो है ये उसके बहुत करीब है. इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है. और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा. तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे. सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है

0: 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक
1: जी,
0: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन टीयू से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन टीयूज का होने का उद्देश्य है इस बात।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर केडी जोशी, डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं, एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात में, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर काठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से हजार साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3,000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक है,
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी एक बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल, कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
0: जी सुनो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरिटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस

0: वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था
1: जी
0: वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है
1: जी
0: उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा, लोगों के लिए वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
2: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग की, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047 उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
0: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
0: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

0: बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। और कोड कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है। समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे वन बन रहा है जो वाराणसी और हल्दिया
1: जी
0: को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई है। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर
1: जी
0: वडोदरा तक। तो अभी आप देखें कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो

0: कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है। बाकी
1: जी
0: पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब, मेरे को लगता है 300 350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो
1: जी
0: एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में। और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट रेंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें
1: जी
0: महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है,
1: जी
0: गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे, पूरी देश की पूरी जो लैंड मास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की, सब जगह कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है मुझे।
1: जी बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए
2: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।
3: விசேஷ் ஷிரிங்லா ஜன்சேவா சே தேச சேவா.
4: இதுவரை மக்கள் பணி தொடங்கி நாட்டுப்பணி வரை டெல்லி செய்தி பிரிவு வழங்கிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே விஷால் ஷர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
5: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
2: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान

0: सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस

0: प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
1: पिछले 5 वर्षों में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: 5 करोड़ नो प्रोसिक्यूशन। पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया है कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109

0: अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 만탄.
1: 예, 아카시모니 해. प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: एसपी जी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई किसानों की मदद के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके रोजगार के अवसर बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए तमाम लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन अगर बेसिक तौर पर समझना चाहें तो किन किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई थी?
3: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो मूल उद्देश्य है या जो सोच के किया गया, उसमें ये मान के चला गया कि देश के उन जिलों में जहां पर कृषि उत्पादकता बहुत कम है और वहाँ पे फसलों की जो सघनता कह सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, खेती के लिए किसानों को कर्ज कम मिलता है, ऐसी जगहों पे जहाँ खेती बहुत बुरे हाल में थी कह सकते हैं, या बहुत न्यूनतम वहाँ की उत्पादकता थी और वहाँ के किसानों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, उनको कर्ज नहीं मिलता था, उनके खेती करने का तौर तरीका, उनके पास वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, इन सबको कैसे ठीक किया जाए, ऐसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया। और जो 100 जिले चुने गए उनमें लगभग देश के सभी राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना को संचालित करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्रीय की 36 योजनाएं, और जिसमें राज्य की भी योजनाएं शामिल है और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी है, यानी जो निजी क्षेत्र, राज्य की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं, मंत्रालयों, विभागों, सारी योजनाएं जो किसानों को संबल प्रदान करती हैं, जो उनकी खेती को अच्छी बना सकती हैं, उनको लेकर के एक ऐसी योजना तैयार की गई ताकि वहां की उत्पादकता बढ़े, वहां के किसानों की स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। सबसे बड़े जोर दिया गया कि फसलों की उत्पादकता यानी उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, यील्ड कैसे बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। दूसरी चीज दी गई कि फसलों में विविधीकरण, वहां पे कौन सी फसल बोई जाए इसका पता होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। इसका पता लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहां की मिट्टी की जांच की गई और वह स्टेट या वह डिस्ट्रिक्ट या वह क्षेत्र किस क्लाइमेटिक जोन में है, यानी वहां क्लाइमेट की ही फसल की खेती को किया जाए। तीसरा था कि क्या सिंचाई की सुविधा वहां है या नहीं है, तो दोनों स्थितियों का आकलन किया गया। उसके अलावा किया गया कि जो वहां उत्पादन होता है वहां पर भंडारण की, गोदामों की उपलब्धता है या नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में हैं जहां उत्पादन तो हुआ लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं है। आफ्टर जो हार्वेस्टिंग होता है, पोस्ट हार्वेस्ट को बोलते हैं, जो खेत से खलिहान तक आने में जो फसलों का नुकसान हो जाता है वो बहुत बड़े स्तर पर होता था, 30-35% तक नुकसान हो जाता था पूरी फसल का। ऐसे में एक फसलों का नुकसान न हो और उसके अलावा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग या जो सरकारी फाइनेंसिंग बैंकों के थ्रू होती है उन तक पहुंच नहीं पाती है। इस तरह के डेटा पहले जुटाए गए और चिन्हित जब किया गया इन डिस्ट्रिक्ट को, इन जिलों के चिन्हित करने से पहले वहां के एक एक छोटे छोटे डेटा यानी जो आंकड़े वहां जुटाए गए कि यहां पर स्थितियां क्या हैं, कौन सी खेती होती है, कितने आय वर्ग के लोग हैं, कितने आमदनी होती है, कितना कुल उत्पादन होता है, सिंचाई का रकबा कितना है, कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है और किसकी खेती हो रही है, तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से खेती को कैसे

0: किया जाए, इसके लिए युवा कृषि वैज्ञानिकों को और जो बहुत कुशल टाइप के जो कृषि के अधिकारी थे उनकी ड्यूटी ऐसे जिलों में तैनात की गई, उनको लगाया गया ताकि वहां के किसानों को हर घड़ी वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके मिले जिससे वो अच्छी खेती करें और उनका आमदनी बढ़े।
1: एसपी जी, 11 मंत्रालयों और विभागों के 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं के साथ जोड़ा गया है और ये हम भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग है, तो ऐसे में प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ इन बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है कि स्थिति के हिसाब से धन का आवंटन हो। जवाबदेही भी एक बड़ा मुद्दा होता है इसमें, और समय पर काम पूरा हो, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
0: मैंने पहले ही कहा था कि जो वहां पे गवर्नेंस के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ऐसे कुशल वैज्ञानिकों की, ऐसे कुशल लोगों की, बैंकिंग में क्षेत्र में इन सारे लोगों को एक ऐसी कमेटी बनाई गई, सतर्कता की कमेटी की बनाई गई, और इसकी पूरी निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर ऐसी निगरानी कमेटियां बनाई गई जो लगातार इन चीजों का आकलन करती रही कि जो ये काम हो रहा है उनको ये सब चीजें उपलब्ध हो रही है, जो सरकार सोच रही है योजनाओं में जो चीजें बनाई गई हैं उन तक पहुंच रही है कि नहीं। समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई हैं और ये समितियां लगातार इन चीजों का आकलन करती हैं और समीक्षा करती हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये जो सुविधाएं जिन किसानों को खेती को मिलना चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है।
1: एसपी जी, अभी अगर हम इस चीज को देखेंगे कि किसानों की बेसिक नीड्स क्या होती है, तो उन्हें इस दिशा में सहायता मिलती रहे लगातार, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है?
0: देश के ऐसे जिलों में जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बेहद पिछड़े हुए और वहां पे जानकारी का अभाव नहीं था या नहीं है कह सकते हैं, ऐसे में जो ये योजना बनाई गई 6 साल की योजना है, 2025-26 में लागू की गई है, 2030-31 तक चलेगी, 1,44,000 करोड़ यानी 1,50,00,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा ऐसे 100 जिलों में। यह अपने आप में एक बहुत अनूठी टाइप की योजना है जिसमें करीब 2.25 करोड़ किसानों को, और इनमें उन किसानों को लिया जाएगा जो छोटे किसान है या सीमांत किसान यानी मझोले या छोटे किसानों को ही इसका लाभ देने की बात है। हमारे किसान कितने कैपेबल हैं, कितने जानकार हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपनी खेती को लेके, अपने तैयारी के लिए, ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहली योजना शुरू की कि हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाए
1: जी।
0: यानी उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं ताकि ऐसी खाद का या ऐसे चीजों का प्रयोग न किया जाए जिससे खेती खराब होती है, और कौन सी ऐसी खाद दी जाए जिसकी कमी है सिर्फ उतनी ही खाद देने से, यानी न्यूनतम खाद देने पर बेहतर बीज और मिट्टी हो, और इसके अलावा उनको सिंचाई की सुविधा दी जाए। हमें लगता है कि ये सुविधा सरकार ने, बेसिक सुविधा होती है किसानों को जो यहाँ के किसानों को तो दी ही जा रही है, इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे किसानों को मतलब उन्नतशील बीज और जो उनके खेतों की या उनकी फसल की जरूरत के हिसाब से कौन सी खाद फर्टिलाइजर यूज की जाए ये इसका उपयोग, और उनकी फसल की देख रेख के लिए कोई उसमें रोग तो नहीं लग रहा है इसका भी बाकायदा कृषि वैज्ञानिक जाके उसका निरीक्षण करते हैं और इस
1: जी
0: बात का पता लगाते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज करके इनको रोका जा सकता है। दूसरा है कि सिंचाई की सुविधा कितनी है, और सिंचाई की अगर सुविधा बेहतर नहीं है तो आज की तारीख में भारत सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री का एक नारा था है अभी कह सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक एक बूंद से ज्यादा उत्पादन लेना, यानी ड्रिप सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, ऐसी योजनाओं को सरकार किसानों को सब्सिडी के आधार पर, समझिए 90% सरकार देती है और 10% किसान लगाता है, और ऐसे 100 जिलों में जो योजना में ये लाभ शायद 100% ही दिया जा रहा है सरकार की ओर से, हर किसान तक, हर खेत तक अच्छी सिंचाई की सुविधा मिल जाए ताकि उसकी खेती के लिए सिंचाई यानी पानी की कोई कमी न हो, अच्छी फसल पैदा करने के जितने भी होते हैं। तीसरी बात, आपने एक बात पूछी कि कृषि यंत्रों और जो उनको टेक्नोलॉजी खेती में यूज होती है कैसे उपलब्ध इनको कराया जाए, इसके लिए सरकार ने 2026 में एक योजना शुरू की है कृषि यंत्रों की अनुदान देने की प्रक्रिया 2026 और 27 इसी साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले चरण में शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत किसान जो भी चिन्हित जिले हैं उन जिलों के जो किसान हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको अनुदान देने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है।
1: एसपी जी, प्रधानमंत्री जी का ये एक मुख्य लक्ष्य रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में महिलाओं और युवा किसानों की भागीदारी बढ़े, तो महिला किसानों, कृषि उद्यमियों और खेती में जो नए नए प्रयोग करने वाले युवा हैं वो किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वित्तीय व्यवस्था उनके लिए क्या हो सकती है और आधुनिक तकनीक जो उनको उपलब्ध कराई जा सकती है, इन तमाम बातों पर रोशनी डाली।

0: हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: महिला जो किसान हैं और उद्यमी हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्यम में हाथ आजमाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, सरकार इसके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है और देश के सारे जिलों में ये सुविधा उपलब्ध है। महिला उद्यमी और युवा उद्यमियों के लिए विशेष तौर पर लाभ दिया जा रहा है, ताकि गाँव से जो लोगों का पलायन शहरों की ओर हो रहा था क्योंकि रोजी रोजगार नहीं थे गाँव में, ऐसे में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और खेती के साथ जुड़े जो उद्यम होते हैं, एग्री बिजनेस जिसको हैं या फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाने की सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है और ऐसे में उद्यमी आगे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, ढेर सारे स्टार्टअप देश भर में खुल रहे हैं। किसानों की सुविधा देने के लिए जो डिजिटल सुविधाएं दी जाती हैं, वह भी युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो मुफ्त में सूचनाएं देते हैं किसानों को। सरकार की ओर से देखिए किसान को यहां तक सुविधा दी जाती है कि हर सप्ताह उसे यह सूचना दी जाती है कि मौसम में कैसा बदलाव आने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, इसके अलावा उनकी फसल किस तरह की तैयार हो गई, अगर उनकी फसल में किसी भी तरह की कीड़े लगने या रोग लगने की कोई आशंका हो तो अपने फोन पर या जो आपके पड़ोस का आपके पंचायत में जो CSC खुला हुआ है सामुदायिक केंद्र, वहां से आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं या आपके पास मोबाइल फोन है उस पर ये डाल सकते हैं सूचना कि ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे किसान को उसके खेत पर उपलब्ध हो जाता है और खास तौर से जो चिन्हित धन धान कृषि योजना के तहत जो डिस्ट्रिक्ट के किसान हैं उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है कि उन्हें अगर किसी भी तरह का मौसम में परिवर्तन होता है तो उस ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए CDO या DDO या जो बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कृषि अधिकारियों को ये पहले से निर्देश रहता है कि किसानों को जागरूक बनाएं रोज और उन्हें सूचना दें कि कब क्या सूचना देनी है और कब कैसे उससे अपने फसलों के बचाव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनकी फसल का पैदावार अच्छी खासी हो जाती है तो अब वो अपनी फसल को लगाएं और जब तैयार खलिहान में आ जाती है या घर में आ जाती है तो उसे वो बाजार तक कैसे ले जाएं और किन बाजारों में ले जाएं और कहां रखें। तो भारत सरकार की एक योजना है बहुत बड़ी जिसको चला रहा है सहकारिता मंत्रालय। सोचिए इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी योजना चली है प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना, जो हर पैक्स में जितने भी न्याय पंचायतें, ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं हैं उनके मार्फत पैक्स जो होता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, उन्हें यह सुविधा दी गई है, सरकार की ओर से मदद दी जा रही है कि हर गांव में गोदाम बनाए जाएं। इससे भारत सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी की बचत होती है क्योंकि अनाज एक बार खरीदती है सरकार, फिर कहीं दूर ले जाके गोदाम में उसे रखा जाता है, फिर वहां से लाया जाता है, तो लाने ले जाने लादने उतारने तो लॉजिस्टिक और इसमें जितना खर्चा होता है वो सारा बचत होगी।
0: SP जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तमाम बातें बताई हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो FPOs हैं यानी कि किसान उत्पादक संगठन, उनकी भी बड़ी भूमिका इसमें रहती है कि वो भी काफी मदद पहुंचाते हैं किसान भाइयों को, तो इनके बारे में किस तरह से मदद इनसे ली जा सकती है, कैसे उनका लाभ उठाया जा सकता है और क्या उनका आज के समय में रोल है खासतौर पे इस योजना के संदर्भ में?
1: देखिए मैं इसी योजना के संदर्भ में एक बात बताऊंगा आपको कि FPO का इस योजना के साथ एक संगम हुआ था 15 राज्यों और 33 जिलों के करीब 72 से ज्यादा जिसमें FPO शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उत्पादकता बाजार तक पहुंच आय बढ़ाने से जुड़े अनुभव साझा किए गए जिसमें प्राकृतिक तिलहन दलहन मधुमक्खी पालन संरक्षित खेती सिंचाई संस्थागत कैसे लोगों को कर्ज मिले और डिजिटल खेती जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। और देखिए FPO है क्या, छोटे छोटे किसानों का एक संगठन बना गया, एक समूह है, एक संकुल है और इनकी जो समूह है मिलकर एक पूरा समूह बना लेते हैं और सारे छोटे छोटे खेतों को बड़े खेत बना दिए जाते हैं। उसके मायने यह होते हैं उसमें आप बड़ी टेक्नोलॉजी के बड़े जो यंत्र हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टर हुआ, जब हार्वेस्ट करने की बारी आती है तो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो उन बड़ी मशीनों का संचालन छोटे खेतों में नहीं हो पाती। तो FPO के गठन के साथ ही किसानों को एक ताकत दी गई कि वो जब मान लीजिए बाजार से कोई इनपुट खरीदना हो, जैसे बीज लेना हो, फर्टिलाइजर लेना हो, पेस्टिसाइड लेना हो या अपना माल बाहर बेचना हो, ऐसी दशा में किसान व्यापारी से जो मोल भाव करता है वो बार्गेनिंग पावर किसान को बहुत कम होती है, उसके पास क्षमता नहीं होती अपने अनाज को रोकने की या किसी इनपुट की खरीदने में। लेकिन जब सामने वाली पार्टी को पता लगता है, इफको क्रिपको या बड़ी कंपनी को पता लगता है कि इनको तो कम से कम 3 ट्रक फर्टिलाइजर की जरूरत है, 2 ट्रक इनको अब सीड की जरूरत है, ये इतने बल्क में खरीदेंगे, भारी मात्रा में खरीदेंगे, तो वो मोल तोल कर लेते हैं, तो जो चीज महंगी बिकने वाली होती है उसे सस्ती में खरीद हो जाती है। इससे ये होता है कि लागत कम आती है और बेचते समय मोल भाव करके भाव बढ़ाकर बेचते हैं किसी कंपनी को बेचते

0: तो ऐसे में किसान को फायदा होता है, यानी एफपीओ का फायदा हुआ तो किसान का फायदा हुआ, क्योंकि एफपीओ उसका पार्ट है, किसान उसका हिस्सा है। तो किसान का जब हिस्सा है एफपीओ में, उस संगठन में, तो जब एफपीओ को फायदा होगा तो किसान को फायदा होगा।
1: एसपीजी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल है। दोनों नेताओं ने आज एक सार्थक बातचीत की। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को शरण लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानून सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच और संस्थागत सहयोग तथा क्षमता निर्माण शामिल है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: आई वॉन्ट स्ट्रेंथन माई पार्टी टू तमिलनाडु।
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
0: भारत ने

0: been identified with standard place and feature names on the official map of the Survey of India. UPI merchant discount rate MDR on select person to merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that, keeping in mind the festive season, MDR on select person to merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. India's Anand Kumar Velkumar has won the bronze in the 500 meter sprint at the World Skate Games 2026 at Asunción, Paraguay, adding another medal to his expanding collection on the international speed skating stage. The 23-year-old speed skater from Tamil Nadu finished on the podium in 40.8.56 seconds, continuing his incredible run following his unprecedented accomplishments at the 2025 World Speed Skating Championships. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अमन यादव मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार ऊर्जा प्रौद्योगिकी सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत भारत ने दोहराया लद्दाख देश का अभिन्न अंग चीन के इनकार से तथ्य नहीं बदलेगा रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने पर पाकिस्तानी सरकार की निंदा और आनंद कुमार विलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है इन क्षेत्रों में व्यापार ऊर्जा प्रौद्योगिकी सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और अनीता आनंद के बीच हुई बैठकें भी शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी डेटा ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड
1: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष होने पर उन्हें बधाई दी और भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर बल दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है श्रीमती सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और विदेशों के निवेशक पूंजीगत लाभ पर कर और प्रतिभूति लेन देन कर सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर लगने वाले करों को लेकर चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खर्च को सुरक्षित रखते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगी

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। श्री शाह ने कहा कि बिम्स्टेक क्षेत्र एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक जरूरी मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रियों के तौर पर उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे बिम्स्टेक को समावेशी विकास और सुरक्षा का मॉडल बनाएं। गृहमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार संगठित अपराध और अवैध ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों में से निपटने में सहयोग के लिए बिम्स्टेक कन्वेंशन को पूरी तरह लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
1: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
0: भारत ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों को निर्धारित कानूनी मानदंडों पर खरा उतरने की स्थिति में मानवता के विरुद्ध अपराधों के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति के 81वें सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए काउंसलर आर मिथिली ने कहा कि ऐसे कृत्यों के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। भारत ने कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों पर कोई नया बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओं का पूर्ण होना चाहिए, न उनकी पुनरावृत्ति। भारत ने इस बात पर बल दिया कि गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और बड़े पैमाने पर किए गए अत्याचारों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना देशों की जिम्मेदारी है। यह कार्रवाई उनके राष्ट्र कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचिक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता है।
3: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। दूतावास ने कहा है कि 10 अक्टूबर को रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल भारतीय नागरिकों में 4 लोग अब भी आईसीयू में हैं और 4 सामान्य वार्ड में उपचार करा रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल लागू करने के सरकार के फैसले की निंदा की है। संगठन ने इसे सेना के समर्थन से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश जताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन IHRF ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और हिरासत में लिए गए अन्य नेताओं को रिहा करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सरकारी आदेशों के जरिए लोगों के अधिकारों को निलंबित नहीं कह सकता। IHRF का यह बयान खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू किए जाने के बाद प्रांतीय सरकार के कई मंत्रिमंडल सदस्यों को हिरासत मिले जाने के बाद आया है। भारत के अनंत कुमार विलकुमार ने पैरागुए में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु के 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में पोडियम पर स्थान हासिल किया। विलकुमार ने 2025 चैंपियनशिप में भी 500 मीटर में कांस्य और 1000 मीटर और मैराथन में स्वर्ण पदक

था जिसे वे दो बार के विश्व चैंपियन बन गए हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इनकार से तथ्य नहीं बदलेगा। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने पर पाकिस्तानी सरकार की निंदा। और आनंद कुमार विलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: The time is 11 p.m. Please stand by for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष

स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश की बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और हेडलाइंस के साथ में है राजेश लेख।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स गेन ओवर 1.5%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22700। Prime Minister Narendra Modi condemns weaponization of global interconnectedness, positions India as a dependable ally. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year. And UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक का उछाल, सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा की बढ़त, निफ्टी 22700 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परस्पर संबद्धता के दुरुपयोग की निंदा की, भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान पर UPI MDR दीपावली के बाद

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 1% से ज्यादा के लाभ में रहा, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली तेजी आई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक equity indices ended over 1.5% higher today. The Sensex surged 1,109 points to close at 73,034. The Nifty soared 359 points to settle at 22,722. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed over 1%, while the small-cap 100 index eked out a marginal gain of 0.1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों में आज बढ़त देखी गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HCL टेक में 8.3% का उछाल आया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 6.6% ऊपर आ गया और टेक महिंद्रा में 4.9% की वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में 0.9% की गिरावट आई और मारुति तथा एटर्नल में 0.6% की सुस्ती देखी गई।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE 26 out of 28 sectors edged upward.

0: Among the top gainers, focused IT surged over 5%, IT climbed 4.9%, and realty advanced 2.5%. In contrast, hospitals and healthcare dropped 0.2% each. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,415 companies advanced, 1,957 declined, and 219 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ। डॉक्टर एसपी शर्मा, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने बाजार में उछाल देखा, तो इसको हम किन परिणामों की वजह मान सकते हैं? खासतौर पर इससे विदेशी निवेशकों का कोई एक नया टर्न माने, या फिर वैश्विक परिस्थितियों पर का जो असर है वो हम पर ज्यादा दिख रहा है, या कुछ अन्य कारण है इसके?
2: देखिए, इसके कई कारण हैं जो सभी कारणों ने मिलके मार्केट को एक अच्छा सर्ज दिया, एक अच्छा उछाल दिया। सबसे पहले तो जो एक वैल्यू बाइंग होती है, जो मार्केट में हमने पिछले काफ़ी दिनों में डिसेलरेशन देखी कि मार्केट ऐसे स्तर पे आ गए जहाँ पे एक वैल्यू स्टॉक्स बनते हैं, जो हम आने वाले टाइम में जिनमें हम एक मुनाफा देख सकते हैं। तो उस लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर है वो आकर्षित होता है कि हम मार्केट में एंटर करें। और दूसरा, जो रोबस्ट अर्निंग्स रही आईटी सेक्टर की, आईटी कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी एक मेजर सपोर्ट मिली है। और तीसरा, कुछ ऐसे कारण है कि जो कैपिटल गेन से कुछ रिलीफ हो सकता है मिले इन्वेस्टर को, एक बहुत वो भी एक कारण है। और चौथे पे जो रुपी एक अप्रिशिएट हुआ, रुपी में एक एकदम से रीबाउंड करना 50 बेसिस पॉइंट एक बहुत बड़ी रिलीफ है रुपी के लिए, वो काफ़ी दिनों से डिसेलरेशन हम देख रहे थे। तो कुल मिला के एक सेंटीमेंट, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, तो उससे चौतरफा जो एक रिकवरी के मोड में मार्केट आई, और मार्केट ने सुबह मार्केट खुलते ही काफ़ी जबरदस्त रिबाउंड दिखाया है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट में एक ऐसी जो एक नेगेटिव माहौल था। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आईएमएफ ने भी भारत की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी सुदृढ़ता जताई है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जताया है, इंक्रीज किया है ग्रोथ को। तो ये भी साथ में एक फैक्टर जो है सपोर्टिव फैक्टर रहा है।
1: बड़े दिनों बाद हमने ये देखा कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक ही ट्रैक में हमें चलते हुए दिखाई दिए। हालांकि बीते दिनों में ये हो रहा था कि जिस ट्रैक पर लार्ज कैप जा रहे थे उस पर शायद स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं पहुंच पा रहे थे, आज सभी एक ही ट्रैक पर चलते दिखाई दिए। तो ये घरेलू निवेशकों का इंटरेस्ट हमें दिखा रहा है ज़्यादा, या इस पर भी वही सारे कारण लागू होते हैं जो आपने बताए?
2: देखिए, इसके ऊपर वही कारण है जो हमने डिस्कस किए हैं कि जब चौतरफा रैली आती है तो सभी में, चाहे वो लार्ज कैप्स हों या फिर स्मॉल कैप्स हों, सभी एक ही दिशा में फिर हमें दौड़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एक तो आईएमएफ ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, भले ही एक कल के जो नंबर्स थे, कल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो फेवरेबल नहीं था और मार्केट्स में कुछ काफ़ी हलचल देखी गई, मतलब करेक्शन थी, तो लेकिन ना उतना ही आज रीबाउंड बहुत स्ट्रांग था जो ये फैक्टर सपोर्टिव फैक्टर बने। मतलब कुल मिला के जो अगर हम देखें इसको कंपोजिट में, तो पॉजिटिव्स ज़्यादा है और नेगेटिव्स थोड़े रह गए।
0: यू मेंशन अबाउट यस्टरडेज डिक्लाइन primarily because of the global risk of sentiment. Have those pressures eased or paused for some time? What should we be expecting? Yesterday was pretty low. Today we are on a high terrain. So what should now in the coming days we should expect?
2: I don't think those pressures are subsides or eased, but today's sentiment is higher than those negative sentiments. So the today's developments are dominating those few negative headwinds which are happening at the global level. But the rise of rupee and the robust IT earnings and IMF confidence on India's economy and some expectations for the tax relief, all these factors were higher or supportive or largely supportive as compared with the some laggards of like the inflation and
0: the global. So Dr. Sharma, does this indicate that the market believes that inflation

0: and interest rate concerns are becoming less severe?
1: Because these are temporary. Actually, these are the repercussions or the results of the West Asia crisis. Mm. That's why crude oil prices are going up, because the global growth is decelerating. Demand is not that much high at the global level, but still crude oil prices in the higher side because of the West Asia or the supply side concerns. So that's why the interest rate are going up, because of the crude oil prices and the inflation trajectory becoming problematic. Mm. So these factors are temporary. As and when there is some peace at the global level between Iran and US, then the crude prices will fall drastically, and the inflation will also come in the realistic zone, and the interest rate also will become rational. So there will not be any increase if the prices are coming down, the inflation becomes stable once again.
0: You mentioned about the IT led the market today with nearly a 5% gain. What is driving the renewed interest in technology stocks?
1: Because India's competitive advantage in IT sector is very strong, still existing at the global level, because we are very strong or competitive in the with the global players, and that's why our companies are gaining more. Though there are headwinds, but our IT sector is very resilient sector at the global level and showing the good results and numbers.
0: So today, FMCG and auto also participated in the rally. How important will the festive season demand be for these sectors in the coming weeks?
1: Yes, IT, as IT is a major driver, IT stocks when are going up, and that creates an overall growth trajectory of the economy, and demand also happening, because the IT earnings also support many other sectors like the real estate sector and the FMCG, because demand is increased in the economy because of the earnings of the IT players or the IT employees also. So that's why I believe this rally becomes more strong when the IT gung-ho happens in the economy.
2: SP, थोड़ा सा अगर तुलना करें पिछले महीने की और इस महीने की, तो हमने देखा पिछले महीने गिरावट का एक बड़ा रुख नजर आया था, लेकिन अक्टूबर में अभी तक मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है. हालांकि वैश्विक परिस्थितियां तमाम हमें अगर ओवरऑल देखते हैं तो उसी तरह से नजर आ रही है. मैं आपसे गहराई से पूछना चाहता हूं, इसमें डीआईएस की क्या भूमिका है?
1: देखिए, इसमें डीआईएस की बहुत स्ट्रांग भूमिका है, जैसे बिकॉज एफआईआई तो आपने देखा कि बहुत ही वॉलेटाइल
2: निकासी हो रही है,
1: आज इधर हैं तो कल कहीं और दिखेंगे. तो लेकिन डीआईएस ने मार्केट को जो सपोर्ट किया, डीआईएस का जो कॉन्फिडेंस है, डीआईएस का जो इकोनॉमी के ऊपर एक जो रवैया भरोसा जिसको हम कहते हैं, उसी से रिटेलर का भरोसा भी बनता है. तो ये दोनों ऐसी सेगमेंट्स है, रिटेलर्स का तो ट्रांजेक्शन काफी हाई है और डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी हाई है, तो दोनों ही काफी अच्छा सपोर्ट जो है मार्केट को देते हैं. तो मैं समझता हूं कि जो पीछे हमने देखा कुछ महीने पहले जो डिसेलरेशन का एक मोड था, जो अब फिर वो डिसेलरेशन डीप हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर उसके बाद करेक्शन आई, फिर रिकवरी हुई, तो ऐसा दौर कई बार चला. तो अभी का ये जो दौर है, अभी मार्केट एक ऐसे स्तर पे आ गई है जहां पे मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, मार्केट की में एक वैल्यू बाइंग आती है. जो लोग सोचते हैं कि मार्केट में हमें 2-3 साल का लोअर स्तर मिल रहा है तो हमें इसमें एंटर कर जाना चाहिए, जबकि कारण कुछ और हैं. कारण हमारी ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ खामी है या फिर हमारी कंपनीज के नतीजे गलत हैं या फिर वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं. कारण है इसके जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, जो एक हेडविंड्स हैं, जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है पिछले काफ़ी महीनों से, जो एक एस्केलेशन हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो ट्रांसमिट हो रही है इन्फ्लेशन में, पहले WPI में, CPI में. तो कारण इसके ग्लोबल है, कारण इसके हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल नहीं है. डोमेस्टिक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग. आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देखिए, आप IIP के नंबर्स देखिए, आप कोर इंफ्रा के नंबर, कुछ भी आप देखिए, तो एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव.
2: अभी जिस तरह से IMF ने आंकड़े, मतलब जो ये बात कही कि GDP हमारी 7% की बढ़ोतरी की बात कही, ये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगा?
1: जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी लार्ज इकोनॉमी नहीं है जो 7% पे ग्रो कर रही हो. आप देखिए चाइना का ग्रोथ जो है IMF ने 4.5% बताया है, मच बिलो एज कम्पेयर्ड विद इंडिया 7% है, और मैं समझता हूँ कि 7 से ऊपर ही रहेगा. अगर आप पिछले 5 वर्षों का डेटा देखेंगे 21-22 से लेके 25-26 तक का, तो एवरेज ग्रोथ जो इंडिया का बनता है वो 7.5% से ऊपर है, जो उन्हीं कंट्री से, उन इकोनॉमी से, चाइना से, USA से, कहीं कहीं मतलब डबल ट्रिपल है. आप ग्लोबल ग्रोथ को देखिए, 3.1%, उससे

0: डबल रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं
1: जी,
0: तो भरोसा बनना तो लाजमी है। जो FIIs का भरोसा बनना या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी भारत की इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनका तो कॉन्फिडेंस बनना स्वाभाविक है। जब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो IMF इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रो एट 7%, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द पीपल।
2: Moving on, Prime Minister Narendra Modi today said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Modi said that India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said India's GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India's foreign exchange reserves exceed $700 billion and the banking system is in its strongest position in many decades.
3: साथियों, 21st सेंचुरी का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था, वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए, वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं।
2: The Prime Minister also positioned India as a dependable ally, offering a radically different cooperative approach to global relations. Mr. Modi said that India does not grow at anyone's cost. He said that India grows with the world and for the world. Apart from that, Dr. Sharma, what the Prime Minister mentioned was also India's reforms. They continue to move India ahead at a high speed. What do you have to say about that? And second thing is about India being the home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world.
0: जी बिल्कुल लेख साहब, दिस इज़ आई बिलीव अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेंशन दैट इंडिया सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रिफॉर्म्स आर प्रोग्रेसिंग एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। सो आई वुड से देर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ विच आर सपोर्टिंग द ग्रोथ। Firstly, the stable policy environment, which we call the reforms express. Reforms are happening each day. One reforms is implemented, then the second also comes to support the first. So this chain is continue since the last many years, particularly from the pandemic years, when we supported the economy with many reforms, reforms for the farmers, reforms for the MSMEs, reforms for the NBFCs, reforms for the citizens, laborers. So these reforms are progressing and providing a great support to the economy. So this is the first pillar. And second is the trajectory of the middle class. Middle class is growing significantly as 25 crore people are pulled from poverty to the middle class, lower middle class, or more lower middle class is now entering.
2: So the consumption story is quite strong.
0: Yes, consumption story is becoming more and more robust and strong to support this growth trajectory, which is happening 7.8% or more than 7% during the last many years. And third is the export competitiveness. We are becoming more and more strong at the global level. Our competitiveness is increasing. We are making new numbers in our exports every year. Last year we posted $863 billion. So now current year we have a target of $1 trillion. So this is again a strong pillar of the economic growth trajectory. And fourth is the ease of doing business, which is happening for the businesses to expand their production possibility frontiers. Reforms are happening, compliances are becoming simple, GST is now becoming simple. So these four pillars are becoming a strong support for the overall economic growth trajectory of the country.
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ी हुई घरेलू मांग और बेहतर सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक बढ़ोतरी को मिली अपेक्षा से

0: अधिक गति के कारण इन अनुमानों में सुधार किया गया है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया गया था। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा तथा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। एसपी, कई सारी बातें इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ी है, एक आम व्यक्ति के नजरिए से अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो आईएमएफ को ऐसा क्या नजर आया भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसकी वजह से आईएमएफ ने यह स्टेटमेंट दिया कि भारत की घरेलू उत्पादन वृद्धि दर इतनी होगी?
1: देखिए, आईएमएफ के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले चार पिलर्स बताए हैं, तो कंजम्पशन एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए, और सेकेंड जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स ने एक बहुत ही बड़ी हैंड होल्डिंग हमारी ग्रोथ को,
0: कारोबार करने में आसानी होना,
1: तभी तो हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे एमएसएमईज ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो हमारे सेक्टोरल डेवलपमेंट्स हैं, लाइक द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या फिर और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है, लगभग कोई 10% के आसपास का अभी हमने जो फर्स्ट क्वार्टर में देखा, तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, 9% के भी ऊपर है, और पिछले साल भी 9.9% था। तो कुल मिला के जो ये फैक्टर्स हैं, ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और खास करके जो चैलेंजेस जो एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए चैलेंज, उनके लिए फिस्कल चैलेंज एक बहुत बड़ी एक समस्या है, और एक आने वाले टाइम में उनको एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है, इन्फ्लेशन उनके कई, जैसे यूएस का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज स्टिकी एट द हायर लेवल, लेकिन ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है और डेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी, और चाइना में ग्रोथ जो है 4.5% पे आ गई है। तो कुल मिला के जो भारत की लीडरशिप है, जो भारत का ग्रोथ रेट है, वो असल में ही सराहनीय है कि हम इतने हेडविंड्स के बावजूद भी हम इस लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर बताया है कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। MDR के संबंध में अगली सूचना समय आने पर अलग से दी जाएगी, और इस बीच सभी उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ निशुल्क यूपीआई लेनदेन करते रहेंगे। MDR शुल्क अगले आदेश के बाद केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक और व्यापारी के बीच किसी भी लेनदेन पर लागू होगा। आंकड़ों के अनुसार लगभग 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेनदेन इससे अप्रभावित रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई QR कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को भी पहले की तरह लेनदेन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। SP, इस तरह की खबर आना हमारे पास कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट में ये दीपावली के बाद लागू किया जाएगा, हालांकि पहले से ही क्लियर है कि जो व्यक्ति से व्यापारी के बीच में होना 2000 रुपए से अधिक का लेन देन उस पर ही होगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि त्योहारों के सीजन में जो डिमांड है काफ़ी हाई रहती है, तो इसमें क्योंकि एक नई प्रणाली सामने आ रही है, तो ये डिसीजन अच्छा है कि जो कोई नई चीज़ है उसको हम एक नॉर्मल जब सिनेरियो होगा उसमें इम्प्लीमेंट करें, तो उसको समझने में लोगों को आसानी रहेगी। अब क्योंकि जो फेस्टिव डिमांड में सबसे ज़्यादा यही 1-3-4 महीने होते हैं जहाँ पे जो शुरू होती है, रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक बहुत ही एक के बाद एक त्यौहार आते हैं, तो क्योंकि ये एक नई प्रणाली है तो इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है जिसमें कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा।
0: एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.5% नीचे आ गया। जापान का निक्केई 225 1.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एसपी में कुछ देर पहले आईटी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन एशियाई बाजार जो कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वहां इस तरह का माहौल हमें देखने को नहीं मिला। जहां पर पॉजिटिव रुख देखते हैं, यहां नेगेटिव रुख देखने को मिला।
1: देखिए, उसमें मैंने जैसे शुरू में बताया था कि काफ़ी फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मार्केट्स ने रिबाउंड किया है आईटी स्टॉक्स के रोबस्टनेस के ऊपर, और सेकंड जो फैक्टर जो था कि रुपी हमारा एप्रिशिएट हुआ 50 पैसे के साथ, और तीसरा जो था कैपिटल गेंस के ऊपर एक आशा जो बनी हुई है कि उसमें शायद हमें कुछ राहत मिलेगी, और ये सभी फैक्टर्स ने मिलके ही हमें सपोर्ट किया है हमारे मार्केट को, तो उसी वजह से, और हमारे फिर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक गणराज्य रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ संयुक्त विनिर्माण और औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थ की लत की चपेट में आ जाता है वहाँ पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास उच्च न्यायालय में दो न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई। धर्मलिंगम लिंगवेश्वरन और बालाथुंडयथुम कार्तिकेयन को मद्रास उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह।

கூடாது ஒரு மன சொர்க்கம் காணாது.

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை மாப்பிள்ளை, இதயத்தை திருடாதே ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा,

0: प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने पर 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में ज्यादातर नाबालिग हैं जो भोज में शामिल होने जाने जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर दूतावास के नए AI अवतार देवी की शुरुआत की है। इसके जरिए लोगों को भारतीय संस्कृति, पर्यटन, छात्रवृत्ति, व्यापार, निवेश के अवसरों और वाणिज्य दूतावास से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा AI देवी भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी से जुड़ी खबरें और जानकारियां भी साझा करेगी। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की PV सिंधु और लक्ष्य सेन पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु को जर्मनी की जवान ली ने 13-21, 25-23, 21-19 से हराया। वहीं तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदायरा को 21-17, 16-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में उनका मुकाबला जवान ली से होगा। भारत के पुरुष डबल्स मुकाबले में साध्वी साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद खेलेंगी। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பொய்யே பொய்யே.
1: நினைவில் என்றவை நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை சிவந்தவன், நம் நாடு, ஆயிரம் பொய் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है. इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं. दोनों नेताओं के बीच सार्थक वार्ता हुई. इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची. अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी. विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है. नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार

0: शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंध पर पड़ेगा। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के समूह क्वाड के अधिकारियों ने साइबर खतरों से निपटने और उन्हें रोकने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सिंगापुर में आयोजित बैठक में उन्होंने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय मजबूती बढ़ाने और देश की अपनी विकास राह चुनने की क्षमता को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। भारत ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों को निर्धारित कानूनी मानदंडों पर खरा उतरने की स्थिति में मानवता के विरुद्ध अपराधों के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति के 81वें सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए काउंसलर आर मिथली ने कहा कि ऐसे कृत्यों के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। उड़ीसा सरकार ने सरकारी स्कूलों के करीब 28,70,000 विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही शहरों में जल निकासी व्यवस्था सुधारने और बाढ़ से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। भारत के आनंद कुमार विल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। PM Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a 2-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary today. The first BIMSTEC Home Ministers' meeting concluded in New Delhi with adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism conducive to terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. In the declaration, the BIMSTEC nations reiterated their determination to prevent,

0: ஒலித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்றும் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அமன் யாதவ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय दौरे पर भारत आई हैं। कल शाम नई दिल्ली पहुँची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पर आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा

0: की घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद ज़रूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने पर 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6वें चरण के अंतर्गत 1 दिवसीय स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आज से नई दिल्ली में भारतीय बिजली क्षेत्र को AI से सक्षम बनाने के विषय पर 2 दिन का विचार मंथन सम्मेलन आयोजित करेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की PV सिंधु और लक्ष्य सेन पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदायरा को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में उनका मुकाबला जवोन ली से होगा। भारत के पुरुष डबल्स मुकाबलों में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। PM Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a 2-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary today. PM Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, PM Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said, "The government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well."
2: जब दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है तो हर 5 में से 1 जेनरिक मेडिसिन भारत से आती है। जब डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है। ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया को एक स्टेडी पिलर की जरूरत होती है तो भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है।
1: The first BIMSTEC Home Ministers' meeting concluded in New Delhi with adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism conducive to terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. In the declaration, the BIMSTEC nations reiterated their

0: இதுவரை இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் கிஷோரி அமோன்கர் அவர்களின் பாடல் கேட்டீர்கள். சுல்தான் கான் அவர்கள் சாரங்கி, பாலகிருஷ்ண ஐயர் அவர்கள் தபேலா. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அமன் யாதவ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर। पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल

0: की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000-50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में 73 भारत विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 73 भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठे चरण के अंतर्गत 1 दिवसीय स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आज से नई दिल्ली में भारतीय बिजली क्षेत्र को AI से सक्षम बनाने के विषय पर 2 दिन का विचार मंथन सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में AI के उपयोग से दक्षता, विश्वसनीयता, चुनौतियों से निपटने की क्षमता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों पर चर्चा करना और ठोस परिणाम तलाशना है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की PV सिंधु और लक्ष्य सेन पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदारा को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। भारत के पुरुष डबल्स मुकाबलों में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum in bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security, and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand arrived in New Delhi on a 2-day visit to India last evening. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary today. The first BIMSTEC Home Ministers' meeting concluded in New Delhi with adoption of Delhi Declaration. In the declaration, the BIMSTEC nations have strongly condemned terrorism and violent extremism conducive to terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. In the declaration, the BIMSTEC nations reiterated their determination to prevent, combat and eliminate terrorism and violent extremism conducive to terrorism in a comprehensive and sustained manner in accordance with the UN Charter and international law. At least 13 people died after a boat capsized in the river Ganga in the Raghupur Diyara area of Bihar's Vaishali district last night. According to the Vaishali district magistrate Varsha Singh, 6 people have been rescued, while police and SDRF teams have launched search operations for those still missing. Most of the deceased are minors who were travelling on the boat to attend a feast. Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi expressed grief over the incident and offered condolences to the bereaved families. The PM also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured will be provided financial assistance of 50,000 rupees each. Bihar CM Samrat Chaudhary condoled the loss of life in the incident and announced an ex gratia of 4 lakh rupees to the kin of each deceased. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stressed that peace and stability along the border are key to maintaining normal relations between India and China. Speaking at Bloomberg New Economy Forum in New Delhi yesterday,

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिन के भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की ये भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कल श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव गंगा नदी में पलट गई। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में अधिकतर नाबालिग हैं। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हादसे में हुई जानहानि बेहद दुखद है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों की गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार सभी तरह के आतंकवादों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के माध्यम से रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।